एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। श्रोता, इस समय सुबह के 5:58 और 55 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं। श्रोताओ, अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए

0: वस्तुओं का निर्यात 440 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 530 अरब डॉलर और सेवाओं का निर्यात 421 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 470 अरब डॉलर करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

जो भी कर्म शुभ भावना से किए जाते हैं दूसरों को सुखी करते हैं, जिन कर्मों में हित की कामना होती है साथ ही दूसरों का भला होता है, वे सभी कर्म पुण्य कर्म होते हैं। इसके विपरीत जिन कर्मों का उद्देश्य अशुभ होता है, दूसरों को नुकसान और पीड़ा पहुंचाने के लिए कर्म किए जाते हैं, जिन कर्मों से दूसरों का अहित जुड़ा होता है, वे कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो कर्म परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से होते हैं, जिनके पीछे हमारा ना कोई स्वार्थ होता है और ना ही कोई कामना, वे निष्काम कर्म होते हैं। निष्काम कर्म का परिणाम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पूर्व जनित और इस जन्म के कर्म संस्कारों को काट सकता है, उनका दहन कर सकता है और मनुष्य शरीर के आवागमन से मुक्त हो जाता है। चिंतन के बालीजी, सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

समुद्र पानी से भरे हुए हैं, लेकिन ये पानी किसी काम नहीं आता। ना तो कोई इसे पीता है, ना तो इससे खेती होती है। लेकिन बादल जब समुद्र का पानी उठाकर भूमि पर बरसाते हैं, तो सिर्फ मोर, पपीहा और किसान ही नहीं, सारी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसी तरह परमात्मा सब जगह मौजूद हैं, लेकिन जब तक इस परम आत्मा से जुड़ने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, तो प्रभु का सुमिरन कौन करेगा। संत पुरुष ही वे व्यक्ति होते हैं जो बादल बनकर प्रभु की महिमा की वर्षा उनके भक्तों पर करते हैं। तब तो भक्त भक्ति का झिलमिल दीप उनके हृदय में प्रकाशमान होता है।

चंदन में खुशबू होती है, लेकिन अगर हवा उस खुशबू को उड़ाकर दूसरे वृक्षों पर और दूसरे स्थानों पर ले जाती है तो चंदन की खुशबू उधर उड़कर चली जाती है। इसी तरह भक्त अगर भगवान की महिमा का विस्तार न करते तो दुर्गति दुराचारी मनुष्य भगवान के गुण और महिमा जानकर सद्गति और सदाचारी नहीं बनते। इसलिए भक्तों का दर्जा भगवान से बढ़कर कहा गया है।

ये तो थी वंदना कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना। FM पैंट 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूं, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

अभी आपने श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ सुना और आज आप सुन रहे थे भाग 137। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शुभप्रयाग। समाचार प्रभात सुबह 8:00, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 8:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम गाने सुहाने का। सुबह 9:00 सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। 9:18 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग 9:30 से 10:00 तक जारी रहेगा। गीतों का कारवां इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे सुबह 10:00। पहाड़ों के सुर हिमाचली गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से सुबह 11:00 प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। जय हिंद गीतमाला के अंतर्गत देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे 11:30 पर। दोपहर 12:00 सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनो सखी। महिलाओं का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम 1:10 से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, 3:05 पर जिला की चिट्ठी रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे 3:10 से 5:00 तक और 5:00 समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, जिसमें 5:00 हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे। संध्याकालीन भजनों का आनंद लीजिएगा 5:10 पर। 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मेरी पसंद और हेलो जीनियस। 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद आकाशवाणी शिमला से 6:00 प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:06 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजा गराएं दिया कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9:00 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आकाशवाणी शिमला से हिमदर्शन कार्यक्रम रिले किया जाएगा। 9:30 पर साहित्य भारती

सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुन पाएंगे। श्रोता, ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा।

अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा अद्य मैनचेस्टर इत्यत्र भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं सप्तवादने प्रारप्स्यते। चेस्टर ले स्ट्रीट इत्यत्र वृष्टिकारणात् पंच स्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा निरस्तीकृता आसीत्। तृतीया स्पर्धा जुलाई मासस्य सप्त दिनांके नॉटिंघम इत्यत्र क्रीडिष्यते। ब्रिस्टल साउथहैम्प्टन इत्येते नगरे विंशति प्रतिविंशति अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलायाः अंतिमयोः द्वयोः स्पर्धयोः आतिथ्यं करिष्यतः यत् जुलाई मासस्य एकादश दिनांके समाप्यते। एतदनन्तरं भारत इंग्लैंड देशौ त्रिस्पर्धानां एकदिवसीयां अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलां क्रीडिष्यतः। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

कार्यक्रम सुबह सुहाने सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। इस प्यारी सी सुबह में नई ऊर्जा और नए जोश के साथ आपसे बातचीत करने के लिए हम रोजाना की तरह स्टूडियोज में आ गए हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ इस वक्त आपने ट्यून इन किया है और ये फ्रीक्वेंसी है आपके अपने पसंदीदा रेडियो चैनल FM धर्मशाला की। आज के प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा। इस सुहानी सी सुबह को और भी सुहाना बनाते हैं और सुनते हैं आज का सुविचार। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के बाद भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। जी बिल्कुल, त्याग करने की बात आए तो नींद, अहम और वहम जब हम छोड़ देते हैं तो जीवन अपने आप सुधर जाता है, सुंदर हो जाता है। तो चलिए आपका मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत के साथ।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ, आज हम बात करेंगे जानी मानी फिल्म अभिनेत्री नसीम बानो के बारे में। भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार और क्वीन नसीम बानो का आज जन्मदिवस है, जो 4 जुलाई 1916 को पैदा हुई। अपनी बेमिसाल खूबसूरती के कारण उन्हें परी चेहरा भी कहा जाता था। 1930 और 40 के दशक के दौरान उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग पर राज किया। नसीम बानो का जन्म एक कुलीन और धनी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता नवाब अब्दुल वहीद खान अमरोहा उत्तर प्रदेश के नवाब थे। उनकी माँ शमशाद बेगम दिल्ली के प्रतिष्ठित गायन घराने से थी, जो स्वयं एक प्रसिद्ध गायिका थी। शाही परिवार में होने के कारण वे बचपन से ही स्कूल पालकी में जाया करती थी। उनकी खूबसूरती के कारण उन्हें नज़र से बचाने के लिए उन्हें हमेशा पर्दे में रखा जाता था। नसीम बानो बचपन से ही फिल्मों की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और अभिनेत्री बनना चाहती थी। इसी चाहत में उन्होंने भूख हड़ताल तक कर दी थी, जिसके कारण बाद में परिवार को झुकना पड़ा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सोहराब मोदी के निर्देशन में बनी फिल्म खून का खून, जो सन 1935 में आई, से की, और 1939 में वो रिलीज़ हुई फिल्म पुकार उनके करियर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस फिल्म की अपार सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनकी फिल्मों की अगर बात हम करें तो खान बहादुर जो 1937 में आई, मीठा जहर 1938 में, तलाक 1938 में, उजाला 1942 में, चल चल रे नौजवान 1944 में और शीश महल 1950 में आई। और उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और कुछ फिल्मों में उन्होंने पार्श्व गायन भी किया है, यानी गाना भी गाया है। तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं शीश महल फिल्म का गाना, जो उनकी माँ शमशाद बेगम ने गाया है। तो चलिए आनंद लेते हैं इस गीत का।

बहुत से गाने ऐसे हैं जो श्याम श्वेत चित्रपट के अंतर्गत हम देखते और सुनते हैं। ये वो दौर था जब फिल्मों का गीतों का आकर्षण आज से भी ज़्यादा था। श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का युग बहुत अनूठा था। उस समय जो गीत बजते थे लोग उन्हें आम भाषा में पक्के ताल के गीत भी कहा करते थे। संगीत कोई भी हो, कहीं का भी हो, हमारे दिल पर उसके बोलों उसकी धुन का असर हमेशा बना रहता है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। विचार व्यक्तित्व की जननी है, जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। जी हाँ, ये विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो 4 जुलाई को मनाई जाती है, जिन्होंने 1902 को बंगाल के बेलूर मठ में महासमाधि ली थी। इस दिन को उनकी महान शिक्षाओं और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद करने के लिए एक प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में उनके ऐतिहासिक भाषण ने दुनिया भर में भारत और सनातन धर्म की पहचान बनाई। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में उन्होंने बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्हें आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता और एक महान समाज सुधारक माना जाता है।

सुबह के 7:26 और 47 सेकेंड। आपने ट्यून इन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम सुन रहे हैं सुबह सुहानी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और ये आज ही के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य सहकारी समितियों की सफलता और सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान का जश्न मनाना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा घोषित 2026 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय है शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता, कोऑपरेटिव फॉर पीसफुल वर्ल्ड। ये थीम सामाजिक एकता को मजबूत करने, समावेशन को बढ़ावा देने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहकारी मॉडल की एक अनूठी क्षमता को दर्शाती है। चौदह इसी के साथ हम मना रहे हैं गुलजारी लाल नंदा की जन्म जयंती। गुलजारी लाल नंदा का जन्म आज ही के दिन 4 जुलाई 1898 को सियालकोट पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। वे एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने दो बार 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के जो पद है वो संभाला था, और उन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सुबह सुहानी कार्यक्रम में मनोरंजन का सिलसिला बिल्कुल जारी है और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब जानकारियां साझा करते हैं इतिहास में आज विशेष की। सन 1776 में अमेरिकी कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा आज ही के दिन की। सन 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान के खिलाफ निजाम और पेशवा के साथ एक संधि की। सन 1810 में फ्रांसीसी सेनाओं ने एम्स्टर्डम पर कब्जा किया था। सन 1827 में न्यूयॉर्क से दासत्व खत्म करने की घोषणा हुई थी। सन 1881 में सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच छोटी पटरी पर टॉय ट्रेन आज ही के दिन चलाई गई। सन 1897 में आंध्र प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म आज ही के दिन हुआ। फिलीपींस को अमेरिका से स्वतंत्रता आज ही के दिन मिली थी। तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया आज ही के दिन 1963 में दुनिया को अलविदा कह गए। सन 1986 में सुनील गावस्कर ने 115वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेलकर नया रिकॉर्ड आज ही के दिन बनाया था। सन 1997 में नासा का पाथफाइंडर

सुबह सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अब सुनते हैं खबर आज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के पचपदरा के दौरे पर जाएंगे और देश के महत्वपूर्ण रिफाइनरी परियोजना का लोकार्पण करेंगे, और ये परियोजना ऊर्जा क्षेत्र और क्षेत्रीय विकास के लिए अहम मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में किशोर न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी 11 डिवीजनों में जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट तैनात किए जाने की दिशा में कार्य जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कुछ राज्यों में मानसून की कम वर्षा पर चिंता जताई है। केंद्रीय और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत $1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले का रोमांच जारी है और दुनिया भर की नजरें आज के मैचों पर बनी हुई हैं। बात करते हैं मौसम की। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है। भारत के मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में भारी वर्षा, तेज हवाओं और गरज चमक की संभावना जताई है।

0: श्रोता, ये तो था आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे शुभ प्रयाग कुछ ही पलों में।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

शुभ्या कार्यक्रम में हिमाचली गीत और लोक संगीत हम आपको सुनवाएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मंजू चिश्ती के गाए इस लोकगीत के साथ।

7:44 हुए हैं और आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम शुभ्याग। कार्यक्रम का अगला लोकगीत लीजिए सुनिए, ओम प्रकाश और साथियों का गाया हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रयाग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए देश गान।

0: आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 8 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से लेके जाएंगे। पहले समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएंगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS

0: बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान

0: के मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों के ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी, लोकसत्ते लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ते ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित

0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।
0: जुबिन नौटियाल नीति मोहन का गाया गाना आपको सुनवा रहे हैं बादशाह फिल्म से। तनिष्क बागची का संगीत, मनोज मुंतशिर के बोल।
2: सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छे।
0: जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने इस गीत को गाया है।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
3: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
3: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
3: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
3: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
3: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: सुबह के 8:44 और 2 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाने सुहाने।

0: लड़के।
1: राहत फतेह अली खां को लीजिए सुनिए बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म में।

0: Joe Turn on the radio. Tenu main love karda बेमतलब करदा।
1: मीका सिंह की आवाज में लीजिए सुनिए डिशों फिल्म का ये गीत।

डिशुम फिल्म के इस गीत के साथ आज का गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि।

जो आसानी से मिलता है वह हमेशा के लिए नहीं रहता, और जो कठिनाइयों से लड़कर मिलता है वह हमेशा हमारे पास बना रहता है।

सभी श्रोताओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर आपसे बातचीत करने के लिए गीतांजलि कार्यक्रम बिल्कुल लाइव फोन इन है, और जिसमें हम बात करेंगे आपसे आप ही के बारे में। और आज का बातचीत का विषय है, आप फैशन को कितनी अहमियत देते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, प्रोग्राम में कॉल करने के लिए आपको मिलाना होगा हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर, और ये नंबर है 01892224391, 01892224391, 01892224391, 08922234391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391, 08922224391,

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: देवराज नाम मेरा, देवराज यही,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बटरा से, बटरा से।
0: बट कहाँ हुआ ये आपका इलाका?
1: ये चिंतपूर्ण के पास है, चिंतपूर्ण के पास।
0: जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में। आज के पहले श्रोता कॉलर आप हैं। और
1: हाँ जी, बड़ी मुश्किल से लगा, मेरा नाम लगता नहीं है, लग गया नहीं है।
0: देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बताएं कि आज आप फैशन को कितनी अहमियत देते हैं अपनी ज़िंदगी में? फैशन शब्द जो है वो, उससे आप क्या समझते हैं? फैशन क्या चीज़ है?
1: कोई भी गाना सुना दो।
0: जी, गाना हम आपको सुनवाएंगे। बिल्कुल श्रोताओं को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैशन जो है हम साधारण भाषा
1: कौन
0: में
1: सी मूवी है?
0: फिल्में आज के प्रोग्राम में हमने नहीं रखी हैं। कुछ मैसेंजर्स पर मैसेजेस जो हैं हमारे फेसबुक पर हमें मिले हैं, और उनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आप गीत की फरमाइश वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन श्रोताओं ने हमें फेसबुक पर मैसेजेस किए हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। और सबसे पहले मैसेज ले रहे हैं हम सतेंद्र चंसोलिया जी का, और वो कह रहे हैं जी हम आपका प्रोग्राम ज़रूर सुनेंगे। ग्राम पंजोनिया, ज़िला जालौन से ये हमें लिख रहे हैं। और विनोद संधु जी ने हमें वेलकम कहा है, और साथ ही में अगला मैसेज है हमारा उत्तम सिंह जंघेल का। नमस्कार, जय जोहार, लिख रहे हैं रोमांस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, मांग लूँगा मैं तुझे तकदीर से। गायक अमित कुमार, लता मंगेशकर, संगीतकार जो हैं आरडी वर्मन। देखिए कितनी अच्छी जानकारी इनको इस गाने के बारे में है। ये लिख रहे हैं कोका विलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मॉरिस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। तो ये गाना हम सुनवाएंगे, और बाकी श्रोताओं से हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से हमें कॉल करें। स्टूडियोज़ का नंबर है 01892224391।

0: हेलो
1: नमस्ते जी, मैं ज्योत्सना पठानिया पठानकोट
0: जी।
1: से।
0: ज्योत्सना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और बताएं कि आप फैशन को कितना अहमियत देती हैं।
1: मैं खुद फैशन नहीं करती, लेकिन फैशन का मतलब ये होता है कि हम दूसरों से अलग हटके और ज्यादा इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं।
0: जी
1: और मैडम, आपने प्रोग्राम में इतना निखार ले आए, आपका तो अपना ही स्टाइल है, अनबीटेबल,
0: जी
1: अनस्टॉपेबल,
0: शुक्रिया।
1: आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो आपका जो आपने एक नया अपना उदाहरण दिया, अगर आपको कॉपी भी करें तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स है। आपका स्टाइल, बोलने का स्टाइल, फेसबुक पे अपडेट और रेडियो पे लाइव, मतलब आपको कॉपी करने के लिए भी, अगर ये फैशन है आपको कॉपी करने के लिए, अगर आपको कोई एडमायर कर रहे हैं, इंस्पायर आप कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉपी करना मुश्किल है, तो वो फैशन में आते हैं कि हम दूसरे को कॉपी करते हैं।
0: जी, आपके बोलों को सुनकर तो हम गदगद हो गए और बहुत हमें खुशी हो रही है कि हमारे श्रोता हमें पसंद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह श्रोताओं को हमारे प्रोग्राम पसंद आएँ और हमारे कार्यक्रम प्रमुख के मार्गदर्शन में हम इन सब कार्यक्रमों को बखूबी निभा रहे हैं। और फैशन जो है वो सिर्फ बहुत भारी मेकअप और बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े या अलग तरह का अंदाज़ बनाकर ही नहीं होता। फैशन का मतलब होता है एक आप एक अच्छी सी पर्सनालिटी बना के, साफ़ सुथरा धुले हुए वस्त्र अगर हम पहन कर कहीं जाते हैं और हमें खुद को उसमें संतुष्टि होनी चाहिए, वो भी एक फैशन है।
1: जी, ये तो है। लेकिन क्या होता है, जैसे हीरो है अमिताभ बच्चन या रेखा
0: जी,
1: वो स्टार्स होते हैं तो हम उनके जैसे देखना चाहते हैं, उनका टैलेंट हमें नहीं आता, जैसे
0: बिल्कुल
1: आपका टैलेंट हमें नहीं आएगा, लेकिन आपको
0: जी रेखा मैम की और अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करें तो वो इतनी खूबसूरती उनमें है कि आज भी वो इतनी युवा दिखती हैं और हर कोई उनके स्टाइल को कॉपी करना चाहता है और उनको फॉलो करते हैं और उनमें देखते हैं कि वो किस तरह के योग, किस तरह से वो ड्रेसेस, उनका ड्रेसिंग सेंस है, उन सबको कॉपी करते हैं। ये सब फैशन में ही आता है, लेकिन फैशन जो है हमारे संस्कारों में भी जुड़ा होता है, क्योंकि कपड़े हम अच्छे पहन लें लेकिन हमारी ज़ुबान से अगर कुछ शब्द ऐसे निकल जाएं तो वो फैशन धरा का धरा रह जाता है कहीं ना कहीं। जी
1: जो चीज एक पे सूट करता है वो हो सकता है दूसरे पे वही ड्रेस सूट ना करे।
0: बिल्कुल जी,
1: चलिए, तो कैरी करने का स्टाइल, कॉन्फिडेंस,
0: बिल्कुल
1: तो
0: किसी भी चीज़ को कैरी करने का स्टाइल जो है, कपड़े आप चाहे 500 रुपए के ही पहने लेकिन उसको आपने किस तरह से कैरी किया है वो फैशन है। जी,
1: और
0: जी बिल्कुल, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात हमसे की। और
1: थैंक यू सो मच
0: जी, शुक्रिया जी। श्रोताओ, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, स्टूडियोज़ का नंबर वही है जाना पहचाना 01892224391। और कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं।

अब्दुल गफर जी लिख रहे हैं, प्रोग्राम प्रसारक जी आदाब, और आदाब हम इनको कह रहे हैं, किसी भी गीत को प्रोग्राम में शामिल कीजिए और साथ ही में हमें भी शामिल कीजिए और कोई भी गीत सुना दीजिए। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खांडवा से ये लिख रहे हैं। अब्दुल गफर डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी। और इसी के साथ हम अगला मैसेज ले रहे हैं बनवारी जयपाल जी का। नमस्कार कार्यक्रम गीतांजलि प्रस्तुतकर्ता को, और हम भी नमस्कार वहां तक भेज रहे हैं। डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया, गांव आर्यान, जिला श्री गंगानगर राजस्थान से ये लिख रहे हैं। अवतार फिल्म के गाने की फरमाइश की है इन्होंने, और कोई भी गाना ये सुनना चाहते हैं। चलिए, इसका बहुत ही एक फेमस सा गाना है वो आपको सुनवाते हैं, और अगली कॉल हम गाने के बाद लेंगे।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गुजरात से आपका नेम है श्रोता धीरज रबारी
0: जी। स्वागत है, और आपसे पहले भी बहुत बात होती थी। और रबारी जी, बताएं कि क्या हालचाल हैं आपके और आपके आसपास के इलाके के?
1: मौसम बढ़िया है, सुहावना मौसम है, बारिश है, रात को धीमी धीमी आई थी
0: जी,
1: वो अच्छा है किसान भाइयों के लिए और शहरी जनों के लिए जो गर्मी के स्पर्श लोग थे उनके लिए राहत की सांस ली थी
0: जी। अच्छी बात है। और देखिए, हमारे यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं भी आप तक पहुँच रही हैं, हमारे प्रोग्राम भी पहुँच रहे हैं, और हमारे बहुत सारे श्रोता मन संग जुड़ रहे हैं। बताएं, फैशन को कितनी अहमियत देते हैं?
1: क्या दीदी?
0: फैशन को कितनी अहमियत देते हैं अपने जीवन में,
1: यानी अपने शौक के बारे में?
0: जी, फैशन, फैशन जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हमारा रहन सहन है।
1: फैशन तो एक देखा जाए तो एक इंसान का एक जेवर है देखकर, क्योंकि फैशन से इंसान को यानी अच्छा लगाने के लिए, कहीं सामने वालों को इम्प्रेस करने के लिए कई बातें इसमें शामिल हो जाती
0: हैं। और हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है बिल्ड होता है,
1: बढ़ जाता है
0: जी। हम कहीं जाते हैं तो हम अच्छे से तैयार

0: होते हैं। अगर हम थोड़ा ऐसे ही घर के कपड़ों में या कहीं ऐसा चले जाते हैं तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि हम थोड़ा अलग थलग दिख रहे हैं। और आजकल कॉलेज के बच्चों में फैशन का बहुत चलन है, तो लड़के लड़कियाँ खूब सज धज कर जो है कॉलेज जाते हैं और एक होड़ सी लग गई है फैशन की, ऐसा मानते हैं आप?
1: बिल्कुल। और देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो ब्यूटी पार्लर में जो कभी कभी हम केमिकल का यूज करते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन वो सेहत के लिए कभी कभार नुकसान करता होती है। हमारा जो सदेह है ना, हमारा देह है, उसमें जो हमने भगवान ने जो रूप दिया है रूप का हम स्वीकार करें, और वो रूप में अगर हम कोई केमिकल युक्त पदार्थ डालते हैं मुंह पर के कहीं पर, तो हमारे देह को नुकसान होता है।
0: जी, तो हम उतना ही मेकअप करें जितना हमारे त्वचा को जो है वो सूट करता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जाए तो पहनने का शौक ज्यादा कहाँ रहता है, शादियों में रहता है।
0: बिल्कुल,
1: यानी जो भाई लोग हैं, बहने हैं, उनको शादियों में बहुत सज
0: जी। सिर्फ ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि महिलाएं जो है वो फैशन के दौर में आगे आगे बढ़ रही हैं, पुरुष जो प्रधान प्रदेश जो हमारा होता जा रहा है वो भी आजकल ब्यूटी पार्लर में खूब मेकअप करवा रहे हैं, हेयर कटिंग और स्पा करवा रहे हैं, फेशियल करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
1: हम भी शामिल है दीदी, हम कबूल करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बात यही है कि हमारा भगवान ने जो हमें देह दिया है
0: जी,
1: हमारा जो
0: उस पर हमें मान करना चाहिए कि भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है और जिस खूबसूरती के साथ भेजा है। जरूरी नहीं है कि रंग कोई भी हो, रंग दो ही हैं, काला गोरा, तो रंगों के साथ हमारे अंदर के जो रंग है, हमारे गुण है, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

जिसे तो हमारा पहनावा, हमारी पसंद, हमारी संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाता है। और अगर हम अपने हिमाचल की बात करें तो हर ज़िले के अपने अपने परिधान हैं, अपनी अलग अलग से जीवन शैली, अपने अलग से रिवाज, बहुत से साज सज्जा के लिए गहने, इसमें किन्नौरी परिधान हो, चाहे कुल्लू के परिधान हो, संस्कृति हो, कांगड़ा में पहने जाने वाली घघरी हो, या फिर यहाँ पर अलग अलग समुदाय द्वारा पहने जाने वाले वेशभूषा। तिब्बत समुदाय के लोग हमारे हिमाचल में बहुत रहते हैं और अलग से खूबसूरत परिधानों में घूमते हैं। तो हर संस्कृति, हर धर्म, हर ज़िले का अपना अलग फैशन है, जिसे पहनकर वहाँ के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और आपको बता दें कि 9:18 होने को हैं। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 9:30 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद। और कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज प्रादेशिक समाचारों के लिए। तो आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार।

0: और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित व्यापार बोर्ड की बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उठाए व्यापार पर निर्यात संवर्धन से जुड़े प्रमुख मुद्दे। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही राज्य सरकार विकास कार्यों के लिए इस महीने लेगी 700 करोड़ रुपए का ऋण। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। दिव्यांग जन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन व नामांकन किए आमंत्रित। मौसम विभाग ने सोलन और सिरमौर जिले में भारी वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। लोक निर्माण विभाग मानसून को लेकर अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल 17 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसमें हाल ही में 7 नए उत्पाद शामिल किए गए हैं। वे कल नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित व्यापार बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इससे राज्य की समृद्ध विरासत व विशिष्ट उत्पाद पहचान को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में एक जिला 3 उत्पाद की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, मूल्य संवर्धन बढ़ाना व स्थानीय उत्पादों के बाजार का विस्तार करना है। इस पर केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्तावित निर्यात संवर्धन अभियान के तहत भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों व जिला आधारित उत्पाद पहलों को बढ़ावा देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता विक्रेता बैठकों सहित निर्यात संवर्धनों कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य में व्यापार को सुदृढ़ करने, निर्यात बढ़ाने, औद्योगिक विकास में तेजी लाने सहित निवेश आकर्षित कर सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहलों व आवश्यकताओं को विस्तार से रखा। बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के सोलन, सिरमौर और ऊना जिले में 4 प्रस्तावित औद्योगिक समूहों के परियोजना प्रतिवेदन अंतिम चरण में हैं और शीघ्र ही उन्हें केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही राज्य सरकार इस महीने 700 करोड़ रुपए का ऋण लेने जा रही है। यह ऋण विकास कार्यों के लिए लिया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश पर कर्ज की सीमा बढ़कर 1,11,900 करोड़ रुपए हो जाएगी। वित्त विभाग की ओर से 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए इससे संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। कर्ज की ये रकम 13 साल बाद ब्याज सहित लौटानी होगी। नीट पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज शाम को शिमला में मशाल जुलूस निकालेगी। इस मार्च में प्रदेश मामलों के प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह मशाल जुलूस 6 बजे शेरे पंजाब के पास से शुरू होकर रिज मैदान पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निकाला जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है और अब नगर पंचायत और नगर परिषद में भी कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। शिमला में उनके विधानसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित BDC अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से मिलने के बाद उन्होंने ये बात कही। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा गुटों में बटी हुई है और चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा इस संबंध में लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं।
1: वहाँ पे भाजपा की जिला परिषद भी बनी है, कई कई जिलों में बनी है, MC उनकी बनी है, वहाँ तो कोई रोक नहीं है। वहाँ पे बेशक हमारी बहुमत नहीं थी, भाजपा को बहुमत मिली तो उन्होंने बनाए, यहाँ पे हमारी है, वहाँ पे हम बना रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनको तो आरोप लगाने की आदत बन चुकी है, मगर इनको जो अंतर कले आज भाजपा के अंदर है, एक ये एक दूसरे में के प्रतिस्पर्धा में जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने ग्रुप को ऊपर करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, मगर इसका कोई औचित्य नहीं है। अब बेबुनियाद आरोप है, जनता को भ्रमित करने के लिए है।
0: जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,168 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद यात्रा की शुरुआत तड़के ही दोनों आधार शिविरों से हुई। आधार शिविरों से संबंधित उपायुक्तों व वरिष्ठ पुलिस

0: अधीक्षकों ने हरी झंडी दिखाकर पुरुष और महिला तीर्थयात्रियों सहित साधुओं को रवाना किया। तीर्थयात्रियों ने बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए पवित्र गुफा के लिए यात्रा शुरू की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे अग्रिम पंजीकरण करने के बाद ही तीर्थयात्रा शुरू करें और अपनी निर्धारित यात्रा तिथियों का पालन करें। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR और ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों की उत्कृष्ट उपलब्धियों व उनके सशक्तिकरण में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों व संस्थानों को सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार हर वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। इस वर्ष भी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के चयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा आवेदन व नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दिव्यांगजनों के अधिकारों, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन एवं नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऊना के जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित ने बताया कि यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी कार्य करने वाले व्यक्तियों, नियोक्ताओं, नवाचारकर्ताओं, संस्थाओं एवं संगठनों को प्रदान किए जाते हैं। पात्र उम्मीदवार और संस्थाएं 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से मंडी जिले के करसोग में 3 दिवसीय एंटी चिट्टा बैडमिंटन प्रतियोगिता का SDM गौरव महाजन ने कल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिभागियों को मंच प्रदान करना और युवाओं को नशे से रोककर उनका मानसिक व शारीरिक विकास करना है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों से खेल से जुड़ने और चिट्टे जैसे खतरनाक जहर से दूर रहने का आह्वान भी किया। 5 जुलाई तक खेले जाने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के 128 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश के कुछ इलाकों में बीती रात से मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन से प्रदेश की 49 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है, जबकि 3 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। राज्य में वर्षा से पेयजल की 23 स्कीमें प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सोलन और सिरमौर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष अन्य जिलों में मॉनसून की सामान्य वर्षा होगी। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मॉनसून की वर्षा को देखते हुए विभाग पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि मॉनसून को लेकर विभाग के साथ जल्द ही रिव्यू बैठक की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि भूस्खलन और सड़क बाधित होने की संभावना वाले क्षेत्रों में पहले से ही मशीनरी तैनात की जाएगी, ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत न हो। उन्होंने ये भी कहा कि सेब बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष रूप से फोकस रखा जाएगा, ताकि बागवान अपनी फसलों को मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकें।
2: पूरी तरीके से तैयारी है मेरी, अभी हम लगातार उस पर डिपार्टमेंट के साथ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं एक दो दिन में मैंने पूरी रिव्यू बैठक रखी है डिपार्टमेंट के सभी चीफ इंजीनियर्स के साथ, अधिकारियों के साथ, SCs के साथ, और उसमें हम पूरा एक रिव्यू लेंगे। जहां पर मशीनरी लगनी है, चाहे उसमें JCB लगनी है, पोकलैंड मशीन लगनी है आपके, और उसमें एक्सकोवेटर लगने हैं, वो लगाए जाएंगे, इन एंटिसिपेशन लगाए जाएंगे। पर्टिकुलरली जो हमारे सेब बहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके है, वहां पे खास ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी दुर्घटना ना हो।
0: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है, स्कूल बंद होने पर सरकार को लौटानी होगी दान में मिली जमीन। जबकि पंजाब केसरी की एक खबर है, आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने का आदेश। अमर उजाला की एक सुर्खी है, हिमाचल में जॉब ट्रेनी को भी 15 दिन का मिलेगा पितृत्व अवकाश। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सुर्खी दी है, बीमारी के निदान में हो जीरो वेटिंग। वन विकास निगम के कर्मचारियों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता, शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने खबर को प्रमुखता दी है। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, किन्नौर में लगातार दूसरे दिन फ्लैश फ्लड, मलबे में 2 गाड़ियां दबी। जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द है, मानसून की भयंकर शुरुआत, 3 दिन में 14 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित

व्यापार बोर्ड की बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उठाए व्यापार पर निर्यात संवर्धन से जुड़े प्रमुख मुद्दे। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही राज्य सरकार विकास कार्यों के लिए इस महीने लेगी 700 करोड़ रुपए का ऋण। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा में दर्शन। दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन व नामांकन किए आमंत्रित। और मौसम विभाग ने सोलन और सिरमौर जिले में भारी वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। लोक निर्माण विभाग मॉनसून को लेकर अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग, जो बिल्कुल लाइव फोन इन है। और स्टूडियोज में कॉल करने के लिए आपको मिलाना होगा हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर 0189222439। हेलो।
3: हेलो पवन जी, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, और नाम बताएं अपना, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गाँव महसापुर से, महेंद्र सिंह राणा।
2: जी स्वागत है आपका, और बताएं कि आप फैशन को कितनी अहमियत देते हैं?
3: देखिए पवन जी, बात ऐसी है कि फैशन जो है, आप अपने कार्यक्रम में खुद ही कह रही थी कि कपड़ा अगर 500 रुपए का भी हो, साफ सुथरा हो
2: जी,
3: तो वो अच्छा लगता है। हमारे पिताजी भी ये कहा करते थे कि बेटा कपड़े चाहे फटे हुए डाल लो, लेकिन साफ सुथरे में चाहिए, धुले हुए में चाहिए।
2: जी बिल्कुल,
3: जरूरी नहीं कि बढ़िया कपड़े पहन करके हम फैशन को बढ़ावा देंगे, लेकिन अच्छे तरीके से, अच्छी मतलब सही जी को पहनावा है उसको पहने।
2: जी।
3: ये नहीं है कि लड़के यहाँ लड़कियों वाले पहनावा पहने और लड़कियाँ जो लड़के वाले पहनावा पहने।
2: जी आजकल का दौर ऐसा ही है, और इसके बारे में हम उनके साथ कुछ नहीं कह सकते, अपनी अपनी सोच का फर्क है।
3: नहीं नहीं, देखिए जो समाज में हमारे में जो चीज जचती है ना, उसी को करना चाहिए, जो हमारे सभ्यता संस्कृति में चलती आ रही है ना, उसी के दायरे में रह करके हमको अपना पहनावा पहनना चाहिए।
2: जी चलिए, आपने बहुत अच्छी बात हमारे संग साझा की। और श्रोताओं, हम कुछ मैसेजेस भी इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। मैसेजेस, अगला मैसेज है हमें अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, अफीना जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जस्मीन, शकीला, सना, समाहीना, रजिया सुल्ताना अंसारी, और उस पर पूरे परिवार की तरफ से नमस्कार उन्होंने कहा है। और कोई भी गाना ये हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से लिख रहे हैं हरदेव मीका, वलविंदर विर्क, जयतेग विर्क और मीका विर्क, इन्होंने भी कोई भी गाना जो है इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए कहा है। और बी कमल जी लिख रहे हैं आदरणीय जी किसी भी गीत को शामिल करें, और नमस्कार लिखा है, साथ ही में शुक्रिया भी लिखा है। मजनू टीला से ये लिख रहे हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, और सतना MP से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहे मलिक। इसी के साथ कोई भी गाना एक और श्रोता हमें लिख रहे हैं, दतार सिंह हैं ये, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। इसके साथ साथ इनकी फरमाइश में शामिल हैं संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। सुरेश राठौर जी लिख रहे हैं प्रस्तुतकर्ता को हमारा प्यार भरा नमस्कार, और हमारा नमस्कार भी उन तक बिल्कुल पहुंच गया होगा। अमानत फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, रफ़ी जी की आवाज़ है, गीत है दूर रह कर ना करो बात। गांधीनगर गुजरात से लिखने वाले हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा। तो चलिए इनकी फरमाइश पर हम ये गाना सुनवा रहे हैं, और बाकी श्रोता भी इस गीत को इन्जॉय करेंगे। प्रोग्राम सुन रहे हैं गीतांजलि लाइव फोन इन।

0: गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मैडम मैं सरका घाट गोपालपुर से बोल रहा हूँ, नागेंद्र सिंह नेगी।
0: नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं कि फैशन को कितनी अहमियत देते हैं आप?
1: मैडम जी, फैशन को तो हम क्या मतलब, ये तो जब से दुनिया बनी है तब से पाषाण युग से भी फैशन में अपने आप तब्दीली भी आती है, और जब से उद्योग स्थापित हुए हैं, फैशन एक उद्योग बन गया है, तो वो भी इसको प्रोत्साहित करते हैं
0: जी।
1: मैं कुल मिलाकर के अगर ये कहूँ कि फैशन एक व्यवहारिकता और इसकी उपयोगिता, ये जो एक हमारा जो सांस्कृतिक सामाजिक जो इसका महत्व है, उसके बहुत से कारण है मैडम जी,
0: जी।
1: एक कला के रूप में विकसित हुआ है, और जैसे अगर ठंड का मौसम है वहाँ का फैशन कुछ और होगा,
0: बिल्कुल,
1: बारिश के दिनों में सूखा रखने के लिए शरीर को हमें कुछ और फैशन
0: बड़े बड़े गमबूट पहने जाते हैं, रेनकोट पहने जाते हैं जी
1: जी जी,
0: जी।
1: और धूप में हम कुछ, और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा गद्दियों का फैशन कुछ और है, कुल्लू लाहौल का कुछ और है, और हमारी टोपियां भी जैसे किन्नौर में है, तो कई मतलब फैशन ही इसको कहा जा सकता है। कहीं पर लाल टोपी पहनते हैं, कहीं पर हरी पहनते हैं
0: जी, और कई टोपियों पर तो फूल लगाए जाते थे जो बांस के बने होते थे कुछ, और आजकल चांदी का जो है इसमें चंदुआ लगाया जाता है टोपियों में, वो एक शान दिखाता है हिमाचल की।
1: बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने वही तो कही ना जी कि ये सांस्कृतिक सामाजिक और ये इसमें धार्मिक भी शब्द आपने बिल्कुल जोड़ दिया, इसका भी एक महत्व है। अब आप देखिए कि ब्याह शादी में हमारा फैशन कुछ और होता है, जब हम पूजा पाठ के लिए मंदिर में जाते हैं तो उस वक्त हमारा फैशन या कपड़ों का पहनावा कुछ और होता है, तो इस तरह से ये जो जैसा देश वैसा बेस वाली बात है
0: जी। शादियों की बात ही अगर आपने की है तो शादियों में जिस तरह जोगनू बनाया जाता है तो उस समय उसको शिव रूप देकर उस पर भस्म लगाई जाती है, और वो भी एक फैशन है। अगर आधुनिकता के दौर से उसको देखा जाए, वो प्राचीन कला से टाइम से ही ये कला प्रचलित है, ये रीति रिवाज जो हमारे चलते आ रहे हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं के समय से ही भी बहुत लंबे लंबे भारी भारी परिधान पहने जाते थे। युद्ध क्षेत्रों में जब वो लोग जाते थे तब भी उनके परिधान इतने आकर्षक होते थे, बेशक वो बहुत भारी होते थे, क्योंकि हम बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं तो उनके जो तलवारें होती थी वो पता नहीं कितने कितने किलो की होती थी, जिनको हमें हिलाना मुश्किल है, और उनके परिधान, क्योंकि उस समय के लोग जो थे वो बहुत शुद्ध चीज़ें खाते थे तो उनकी जो हाइट है वेट है वो बहुत ज़्यादा होता था, उसी हिसाब से वो जो उनके वस्त्र होते थे वो लोहे के वस्त्र मैंने कई हिस्टोरिकल प्लेसेस में देखे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक फैशन का दौर था और आज भी एक फैशन का दौर है, लेकिन इस दौर को हमने कैसे बनाए रखना है ये हम पर है
1: जी। बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब इसमें जो पेशेवरता उसकी अहमियत, उसका जो प्रबंधन, या जो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो फैशन एक आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार, देश काल के अनुसार और मौसम के अनुसार जो है हमारा बदलता रहता है, और इसमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी ये बढ़ाता है जी।
0: बहुत
1: हमें
0: अच्छी
1: भीड़ में कॉन्फिडेंस पैदा करता है जी।
0: जी जी, और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे संग साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी श्रोता भी हम संग जोड़ सकते हैं, नंबर वही है जाना पहचाना 01892224391। श्रोताओं मैसेजेस भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, ये हमें मैसेज लिख रहे हैं रवि कुमार राहुल, ईमेल व्हाट्सएप और खतों पर कोई भी फरमाइश का कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला से नहीं होता है, सिर्फ फोन इन कार्यक्रम होता है, कृपया जल्द से जल्द फरमाइशी कार्यक्रम भी शुरू करें ताकि हम आकाशवाणी धर्मशाला से जुड़ सकें।

और ये लिख रहे हैं कस्बा बराड़ा, ज़िला अम्बाला, हरियाणा से। तो इनकी जो सुझाव है वो हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी हैं वहाँ तक पहुँच गया होगा। और अगला मैसेज हम ले रहे हैं मुकेश कश्यप जी का, कह रहे हैं आपको मेरा नमस्कार, ज़िला मुरादाबाद, ग्राम धूलापुर, उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज कर रहे हैं मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और ये मुझे लग रहा है इनके परिवार के सारे सदस्य हैं और प्रेम रोग फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, भंवरे ने खिलाया फूल फूल। तो गाना बिल्कुल सुनवाएंगे। और श्रोताओ, आप भी हमें मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन एक गुजारिश रहेगी कि जो पोस्टर गीतांजलि कार्यक्रम के लिए डलता है उस पोस्टर के नीचे ही आप अगर आप फरमाइश हमें भेजें, क्योंकि ये प्रोग्राम वीरवार और शनिवार को प्रसारित किया जाएगा। तो जब वीरवार और शनिवार को कोई भी पोस्टर डलता है तो उसके नीचे ही अपनी फरमाइश भेजें ताकि हमें पढ़ने में भी दिक्कत ना हो।

0: हेलो
1: हेलो मैडम,
0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: जी,
1: मैडम
0: नाम
1: जी।
0: बताएं अपना।
1: मैं राकेश गुप्ता गाड़ी से बोल रहा हूँ
0: जी,
1: मैडम
0: स्वागत
1: जी।
0: है आपका बहुत बहुत। और
1: धन्यवाद
0: बताएं, फैशन को
1: मैडम
0: कितनी
1: जी।
0: अहमियत देते हैं आप?
1: मैडम जी, फैशन वो होना चाहिए जो स्वयं को तो अच्छा लगे, लगे दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा
0: बिल्कुल
1: उसमें वो थोड़ा मैडम जी, फैशन में ना अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। फैशन मतलब अच्छा फैशन, कपड़े महंगे डालने से फैशन नहीं है। कपड़े कपड़े कम वाले भी रेट के डाले, अच्छा लगे, सुंदर लगे।

0: वो फैसले मैंने
1: जी,
0: लिया
1: तो
0: बेचारे।
1: आप भी कभी बहुत सज धज के तैयार होते हैं और फैशन की तरफ आप भी अट्रैक्ट होते हैं।
0: मैं फैशन की तरफ तो जो अच्छा लगता है उसकी तरफ तो हम अट्रैक्ट होते ही ना जी, वो तो एक एक जो स्वभाव ही समाज स्वभाव ही है उसमें तो हर कोई अट्रैक्ट होते ही है ना जी,
1: जी
0: और
1: आप,
0: अच्छा होना चाहिए ना।
1: आपकी उम्र
0: मैं
1: क्या
0: तो
1: है?
0: मैंने मेरी तो 64 हो गई मैडम।
1: जी, तो
0: मैं तो
1: आपके परिवार में जो महिलाएं हैं,
0: हाँ
1: बच्चे हैं,
0: जी
1: वो जब फैशन करते हैं मतलब किसी भी तरह का, तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है?
0: मेरी बड़ी बेटी की तो शादी हो गई है, उसका बेटा भी है। अच्छा, और छोटी बेटी वो तो फैशन बिल्कुल भी नहीं करती ना जी, वो एक लड़का है मेरा, वो तो बिल्कुल भी नहीं करती, उसको तो फैशन लगता नहीं अच्छा मेरा जी।
1: जी जी
0: लड़का
1: जी
0: छोटा है, लड़का तो मेरा छोटा काफी, वो 11th में है,
1: जी
0: वो भी
1: जी
0: फैशन की तरह उसका भी ध्यान नहीं है
1: जी
0: मेरे को।
1: आजकल बच्चे तो अलग अलग हेयर स्टाइल बना रहे हैं, चाहे छोटे हों, छोटे छोटे बच्चे जो अभी तक मतलब उन्हें अपने कपड़े भी ढंग से पहनने नहीं आते हैं, तो बस टीवी में हीरो हीरोइन को देखते हैं या अपने कार्टून को देखते हैं। अगर कार्टून के बाल सफ़ेद हैं तो वो भी चाहते हैं कि हमारे बाल भी सफ़ेद हो जाएँ, रंगीन हो जाएँ, हम दुनिया को बचाने जाएँ, तो ये भी एक तरह का फैशन है। तो फैशन का असर जो है बच्चों को बचपन से ही होने शुरू हो जा रहा है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, और
0: जी
1: मोबाइल का
0: बिल्कुल
1: ज़माना जो
0: मैडम,
1: है जो कोविड के दौरान से शुरू हुआ, क्योंकि पहले हम पहुंच बच्चों की मोबाइल तक बहुत कम होती थी, लेकिन जब
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: दौर आया जब बच्चों को अपनी पढ़ाई जो है मोबाइल के ज़रिए या लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए जारी रखनी पड़ी, उसके बाद एक चलन सा हो गया है कि बस मोबाइल जो है वो छोटी उम्र में ही बच्चों को दिए जाते हैं। आजकल स्कूल का होमवर्क भी, इवन कोविड जो ख़त्म हो गया है उसके बावजूद भी जो काम है वो फ़ोन पर आता है, डायरीज लिखने बंद कर दी गई है ना?
0: बिल्कुल मैडम जी, लिखने की तो प्रैक्टिस बच्चों को ना बिल्कुल ही कम हो गई है। और मैं एक बात आपको और बताऊँ ना, हम भी पढ़ते थे मैडम जी, आजकल बच्चों की वोकैबुलरी भी बिल्कुल कम हो गई है, क्योंकि बच्चे जब भी मैसेज करेंगे शॉर्ट मैसेज करते हैं,
1: जी,
0: तो
1: शॉर्ट
0: शॉर्ट
1: मैसेज, और
0: जो
1: बच्चों ने
0: शॉर्ट
1: अपना
0: मैसेज
1: दिमाग का इस्तेमाल करना भी बहुत कम कर दिया, क्योंकि
0: अच्छा
1: जो भी चीज़ है वो पहले उसको ढूंढते थे किताबों में, अपने पेरेंट्स से पूछते थे, अपने भाई बहनों से पूछते थे, किसी विषय का उनको ज्ञान लेना होता था।
0: डिक्शनरी वगैरह भी देखते
1: अब
0: थे मैडम जी
1: वो
0: आप।
1: लोग, चैट जीपीटी का ज़माना आ गया है, जेमिनाई का
0: हाँ जी
1: ज़माना आ गया है, गूगल का ज़माना आ गया है, तो वो जो भी प्रश्न है वो गूगल को पूछते हैं, जो भी उन पर उत्तर जो उन पर प्रोवाइड किए जाते हैं मिलते हैं उसी को समझ कर वो, उनको लगता है उनकी दुनिया जो है वो सिर्फ इंटरनेट पर ही उनकी दुनिया है, तो वो बाहरी लोगों से भी अब कट रहे हैं।
0: और मैडम जी, मैं तो एजुकेशन बोर्ड में था ना जी, तो हम देखते थे ना बच्चों की वोकैबुलरी, और जो जो शॉर्ट मैसेज गई थे ना, तो उनकी वैसे ही ना स्पेलिंग भी वैसी बन गई है, जैसे मान लो गुड है तो GUD को
1: जी
0: लिखेंगे,
1: जी
0: GOOD नहीं लिखेंगे ना। तो कल को कहीं आप बच्चों ने कहीं एग्जाम देना कुछ देना, तो वो शॉर्ट मैसेज ही लिखते हैं, तो
1: जी
0: उनसे भी एक किस्म
1: तो
0: का
1: फिर
0: उनका
1: नंबर
0: दिमाग
1: भी
0: है
1: शॉर्ट
0: मैडम।
1: ही आएंगे, तो हमें
0: हाँ जी
1: थोड़ा
0: शॉर्ट आएगी
1: सा
0: जी,
1: मतलब इसमें जो हम पेरेंट्स हैं उन्हें भूमिका निभाने पड़ेगी थोड़ी सी, थोड़ा
0: हाँ
1: बच्चों
0: जी
1: को
0: बिल्कुल
1: समय देना पड़ेगा। प्रोग्राम में आपने कॉल किया,
0: मैडम,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी श्रोता भी हम संग जुड़ सकते हैं, श्रोताओं आपके मैसेजेस पढ़ने का सिलसिला बिल्कुल जारी है। चंद्रकांत साहू का मैसेज हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आदरणीय सर और मैम नमस्कार, और कार्यक्रम में हमें भी शामिल करें। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतारी छत्तीसगढ़ से ये लिख रहे हैं, चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू, शिखा शेफाली। और अगला मैसेज है अरुण कुमार मालविया का, सादर प्रेम नमस्कार। नमस्कार, तो हम सभी श्रोताओं को बार बार कह रहे हैं, बड़ी गैवी चौराहा वाराणसी से ये हमें लिख रहे हैं, फिल्म नटवर लाल का गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए इनकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, और बाकी श्रोता जुड़ते रहें 01892224391 पर।

0: लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, अब 8 मिनट का समय हमारे पास बचा है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 01892224391, ये हमारे स्टूडियोज़ का नंबर, और फेसबुक से भी हम मैसेजेस ले रहे हैं। अगला मैसेज हमें मिला है नितेश कुमार देवागन का, लिख रहे हैं सब प्रेम नमस्कार, पता है उनका पल्लारी छत्तीसगढ़ से। नितेश कुमार देवागन, दुर्गा प्रसाद देवागन, पराग टेलर, पुराना पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन और कोई भी गीत शामिल करने के लिए इन्होंने कहा है। इसी के साथ नारायण लाल साहू जी लिख रहे हैं, आरजी को सादर सप्रेम नमस्कार, माँ बलेश्वरी धाम सांकरा सोमानी जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से ये लिख रहे हैं। नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, और किसी भी गीत की फरमाइश इन्होंने की है। अगला मैसेज है दुर्गाराम साहू का, और नमस्ते जी लिख रहे हैं, चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से लिख रहे हैं। दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, और कोई भी गाना सुनने की ये फरमाइश कर रहे हैं। एक कॉलर लेते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: अनीता बात कर रही हूँ मैम, तलवाड़ा से।
0: जी, स्वागत आपका, और बताएं कि फैशन को कितनी अहमियत देती हैं आप?
1: मैम बहुत कम।
0: तो फैशन से क्या समझते हैं आप?
1: नहीं मैम, अच्छा है लेकिन अपने अकॉर्डिंग, है ना, जो अच्छा लगे वही।
0: जी, तो सजना संवरना भी फैशन है, जो महिलाएं सुबह उठकर नहा धोकर श्रृंगार करती हैं।
1: तब ऐसे नहीं।
0: जी जी जी, तो अच्छी बात
1: है। मैंने आपका, मैंने रीना मैम को नमस्ते बोलना था, उनसे काफी दिनों से मेरी बात नहीं हुई है।
0: चलिए अच्छा है, वो प्रोग्राम सुन रही होंगी।
1: मंगलवार को जो 12:30 बजे सहेलियों का प्रोग्राम आता था, बंद हो गया अब?
0: नहीं सुनो सखी, जो है वो प्रोग्राम बिल्कुल आता है, आज भी आप सुन सकते हैं। और
1: 12:30 बजे ना?
0: जी, 12:30 पर। बस कार्यक्रम का नाम जो है वो उसका परिवर्तन कर दिया गया है, तो अब सुनो सखी आप को सुन सकते हैं। चलिए, आपने प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मैसेजेस पढ़ने का सिलसिला जारी कर रहे हैं। और श्रोताओं, अगला मैसेज है सुरेश चौरसिया का, आदरणीय आरजी सादर नमस्कार प्रणाम, कोई भी गाना सुनवा दीजिए। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया और संजू लल्ला चौरसिया, बल्केश्वर कॉलोनी आगरा।

श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया वीर और अबीर नवाबगंज कानपुर से, श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया चौरसिया। तो सभी को धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस हमें भेजने के लिए। श्रोताओ, तो आपको हम फिर से बता दें कि जब भी वीरवार और शनिवार के लिए कार्यक्रम का पोस्टर डलता है तो उस पोस्टर के नीचे ही आप हमें मैसेज लिखकर भेजें तो बहुत बेहतर होगा। और कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हम अपनी पसंद से सुनवा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमने मैसेजेस पढ़ लिए हैं कि आप अपनी पसंद से कोई गाना सुनवाएं। लीजिए, सुनते हैं।

श्रोता, आपसे एक और गुजारिश रहेगी, जिन लोगों ने आज के प्रोग्राम में हमें कॉल किया है वो लगभग 15 से 20 दिन तक कार्यक्रम में कॉल न करें, क्योंकि बाकी श्रोताओं को भी इससे जुड़ने का मौका मिलेगा।

श्रोताओं, कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति की ओर है और बता दें कि इस प्रोग्राम के लिए तकनीकी सहयोग रहा विपिन कुमार का, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दे इजाज़त, बस यही कहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें आकाशवाणी धर्मशाला।

अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों का कारवां, और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके संग आपकी रेडियो दोस्त एकता। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

अभी ये गीत सुना आपने फिल्म दिल तो पागल है से, और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की थी उत्तम सिंह ने। अब आपके रेडियो सेट पर है फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं एआर रहमान के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के लिखे गीत को फिल्म सपने से। इस गीत को गाया है हेमा सरदेसाई और साथियों ने।

आशा भोंसले और अभिजीत के युगल स्वरों में। लीजिए अगला गीत शामिल कर रहे हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, और इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

आपने ट्यून किया है FM धर्मशाला 103.4 MHz पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म कभी खुशी कभी गम से, और इस गीत को गाया है सोनू निगम, अलका याग्निक ने। शब्द रचना है अनिल पांडे की और संगीत दिया है संदेश शांडिल्य ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों का कारवां। आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब आनंद लीजिए हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर का।

ये लोकगीत सुना आपने प्रदीप परदेसी का गाया हुआ। अब आपके रेडियो सेट पर है अगला लोकगीत प्रताप चंद शर्मा और राकेश शर्मा का गाया हुआ।

अभी ये लोकगीत सुना आपने बलवीर सिंह की आवाज़ में। कार्यक्रम में अगला लोकगीत लाए हैं हम अक्षर सिंह परमार और ज्वाला प्रसाद के मिले जुले स्वरों में।

0: धीरज शर्मा का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

0: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आखिरी लोकगीत शामिल कर रहे हैं विक्रांत का गाया हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। अब वक्त है प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल 17 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिनमें हाल ही में 7 नए उत्पाद शामिल किए गए हैं। वे कल नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित व्यापार बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इससे राज्य की समृद्ध विरासत व विशिष्ट उत्पाद पहचान को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में एक जिला 3 उत्पाद की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, मूल्य संवर्धन बढ़ाना व स्थानीय उत्पादों के बाजार का विस्तार करना है। इस पर केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्तावित निर्यात संवर्धन अभियान के तहत भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों व जिला आधारित उत्पाद पहलों को बढ़ावा देने का आश्वासन भी दिया। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही राज्य सरकार इस महीने 700 करोड़ रुपए का ऋण लेने जा रही है। ये ऋण विकास कार्यों के लिए लिया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश पर कर्ज की सीमा बढ़कर 1,11,900 करोड़ रुपए हो जाएगी। वित्त विभाग की ओर से 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए इससे संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। कर्ज की यह रकम 13 साल बाद ब्याज सहित लौटानी होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है और अब नगर पंचायत और नगर परिषद में भी कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। शिमला में उनके विधानसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित BDC अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से मिलने के बाद उन्होंने ये बात कही। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा गुटों में बंटी हुई है और चुनाव तरह निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा इस संबंध में लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। दिव्यांगजनों की उत्कृष्ट उपलब्धियों व उनके सशक्तिकरण में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों व संस्थानों को सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार हर वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। इस वर्ष भी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के चयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा आवेदन व नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दिव्यांगजनों के अधिकारों, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन एवं नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऊना के जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित ने बताया कि यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी कार्य करने वाले व्यक्तियों, नियोक्ताओं, नवाचारकर्ताओं, संस्थाओं एवं संगठनों को प्रदान किए जाते हैं। पात्र उम्मीदवार और संस्थाएं 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: नीट पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज शाम 6 बजे शिमला में मशाल जुलूस निकालेगी। इस मार्च में प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से मंडी जिले के करसोग में 3 दिवसीय एंटी चिट्टा बैडमिंटन प्रतियोगिता का SDM गौरव महाजन ने कल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिभागियों को मंच प्रदान करना और युवाओं को नशे से रोककर उनका मानसिक व शारीरिक विकास करना है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों से खेल से जुड़ने और चिट्टे जैसे खतरनाक जहर से दूर रहने का आह्वान भी किया। 5 जुलाई तक खेले जाने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के 128 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश के कुछ इलाकों में बीती रात से मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन से प्रदेश की 49 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है, जबकि 3 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। राज्य में वर्षा से पेयजल की 23 स्कीमें प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सोलन और सिरमौर जिले में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष अन्य जिलों में मॉनसून की सामान्य बारिश होगी। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मॉनसून की वर्षा को देखते हुए

0: पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि मॉनसून को लेकर विभाग के साथ जल्द ही रिव्यू बैठक की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। लीजिए अब वक्त है हिमाचली गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों की गूंज का।

अभी ये लोकगीत सुना आपने, विपिन कुमार का गाया हुआ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की, और इसमें हम अगला लोकगीत शामिल कर रहे हैं ओम प्रकाश और साथियों का गाया हुआ।

मान सिंह और सुनील राणा के गाए इस लोकगीत के बाद कार्यक्रम में अब आखिरी पेशकश है रीता देवी और सखियों के इस लोकगीत की। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए देशभक्ति गीत।

सोनू निगम, रूप कुमार राठौर और साथियों का गाया ये देशभक्ति गीत आपने सुना फिल्म बॉर्डर से। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फना से ये देशभक्ति गीत महालक्ष्मी अय्यर के स्वर में।

देशभक्ति गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनवा रहे हैं एआर रहमान के संगीत निर्देशन में फिल्म रोजा का ये देशभक्ति गीत, हरिहरन ने इसे गाया है।

रूप कुमार राठौर के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम में अब आखिरी की देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं, द लेजेंड ऑफ भक्त सिंह फिल्म से सोनू निगम और मनमोहन वासीर के गाए इस देशभक्ति गीत को। तो आनंद लीजिए FM धर्मशाला के साथ इस देशभक्ति गीत का।

आप सुन रहे थे जय हिंद गीतमाला। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

मुकेश और साथियों का गाया ये देशभक्ति गीत सैनिक साथियों अभी आपने सुना। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को। रविंद्र जैन का संगीत है, फिल्म है राम तेरी गंगा मैली।

दोपहर के 12:09 और 38 सेकेंड। आपने ट्यून इन किया है 103.4 MHz। प्रोग्राम सुन रहे हैं सैनिकों के लिए। सैनिक साथियों, अब लीजिए सुनिए सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी के युगल स्वरों में दिल से फिल्म का ये गीत, संगीत AR रहमान का।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। करीब फिल्म का गाना सैनिक साथियों अब आपको सुनवा रहे हैं। धुन तैयार की है अनु मलिक ने, गायक कलाकार कुमार सानू।

सैनिक साथियों, ये रही कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। काल फिल्म का ये गीत है ए आर रहमान का संगीत, मीठी सी आवाज़ आशा भोंसले की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुनो सखी।

के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी एकता। सभी श्रोता सखियों को मेरा नमस्कार। सखियों, खुश रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ढेर सारी खुशियां, सुख सुविधाएं हों, पर ज़रूरी ये है कि जो भी हमारे पास है उसमें कैसे हम खुश रहें। जी हाँ, हमारी अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, बल्कि सखियों आपने भी देखा होगा कि अगर हमारा एक काम पूरा हो जाता है तो हम दूसरे काम को पूरा होने की उम्मीद लगा बैठते हैं। जी बिल्कुल, हमारी अपेक्षाएं जो हैं हमेशा बढ़ती ही जाती हैं, और जब ये पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। सही कहा ना सखियों, जब हम उदास होंगे, दुखी होंगे, तो कैसे स्वस्थ और खुश रह पाएंगे। तो जो आपके पास है उसमें खुशियाँ ढूंढें और उससे बेहतर पाने के लिए लगातार कोशिश करती रहें। जी हाँ, जीवन रुकने का नहीं, चलने का नाम है। हम भी कार्यक्रम के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं बात आज के कार्यक्रम की। जी हाँ सखियों, आज है शनिवार और आप तो जानती ही हैं कि अब हम हर माह के पहले और तीसरे शनिवार को लेकर आते हैं कार्यक्रम में एक ऐसी चिट्ठी जो एक माँ ने अपनी बेटी को लिखी होती है, और इस चिट्ठी के माध्यम से हम एक माँ की भावनाएं अपने बच्चों के लिए क्या होती हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। वैसे तो हम सभी को ये एहसास है कि एक माँ अपने बेटे के लिए क्या भावना अपने मन में रखती है, पर आज वो भावना हम एक चिट्ठी के माध्यम से जानेंगे। आजकल सखियों हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों से दूर नज़र होते आ रहे हैं। जी, हम सब अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गए हैं कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे के मन की बात भी नहीं जान पा रहे, चाहे हम माता पिता या फिर हमारे बच्चे जो हैं एक ही घर में रह रहे हैं, पर फिर भी हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पा रहे। तो ऐसे में हम माताओं का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को वक्त दें, साथ ही उनके साथ बैठें, कुछ पल बिताएं और उनके दिल को जानें, ताकि रिश्तों में आती दूरी को कम किया जा सके। सखियों, हम भी आपसे अपने मन की बात जो है शेयर करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले मनोरंजन के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं ये गीत।

जी सच में सखियों, माँ बच्चों की जान होती है। माँ वो होती है जो हर बात बिना कहे समझ जाती है, मुसीबत में हिम्मत बन जाती है, कभी डांटती है तो कभी प्यार करती है। जी हाँ, अगर कोई नहीं जो हमारी बात, दिल की बात जो है समझ पाता है, सिर्फ एक माँ ही है जो हमें दिल से जानती है। अगर हम कुछ ना भी बोलें तो वो हमारे मन को भी पढ़ लेती है। सखियो, माँ की डांट में भी प्यार झलकता है। सखियो, आज हम इस कार्यक्रम में एक ऐसी चिट्ठी शामिल करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको भी अपनी माँ की चिट्ठी याद आ जाए। माँ के रूप में बेटी को अपनी पहली दोस्त मिलती है। माँ वो होती है जिसके साथ सखियो बच्चों का अपना सांसों का रिश्ता होता है। जी माँ ही केवल एक ऐसा इंसान है जिससे बच्चे धड़कनों से जुड़ते हैं। जब माँ दूर चली जाती है तो सच में जीवन ऐसा लगता है कि हमारी सांसें कहीं थम सी गई है। माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है और भावनाओं से भरा होता है। सखियो, एक माँ ही अपने बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब माँ साथ होती है तो ही बच्चे कामयाब होते हैं। पर सखियो, कभी ये मत सोचो कि आपकी माँ आपके साथ नहीं है। माँ हमेशा हमारी धड़कनों में बसी रहती है। सखियो, आप सोच रही होंगी, हमने तो आपसे कार्यक्रम में एक माँ की चिट्ठी साझा करने की बात की थी, पर हम तो कुछ और ही बातें कर रहे हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। पर सखियो, जब माँ की बात आती है तो बातें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं।

कब इतनी बड़ी हो गई और तुम पढ़ने के लिए हॉस्टल चली गई। सखियो बेटी, जब तुम मेरी दुनिया में आई तो तुमने मेरी पूरी दुनिया ही बदल डाली। आज चाहे मुझे तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए तुम्हें अपने से दूर हॉस्टल में भेजना पड़ा, पर फिर भी ये सोचकर मैं खुश हूँ कि अगर तुम पूरी लगन से पढ़ोगी तो अपने सपनों को साकार कर आत्मनिर्भर बन पाओगी। बेटी, सच कहूँ तो जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती। रास्ते पर चलते चलते कभी कई कठिनाइयाँ आती हैं तो कभी बहुत सी खुशियाँ भी दस्तक दे जाती हैं। बेटी, तुम्हें हॉस्टल में तरह तरह के लोग मिलेंगे, कोई तुम्हें आगे बढ़ने वाला मिलेगा तो कोई कभी तुम्हारे कदम रोकने वाला भी होगा। लेकिन मेरी ये सीख हमेशा याद रखना, खुद पर भरोसा करना और स्वयं को कभी किसी से कम मत समझना। इस चिट्ठी पर लिखी बातों के साथ साथ कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, पर पहले करते हैं आपका इस प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन और इस चिट्ठी के साथ। यूं ही इस कार्यक्रम में आपके साथ जो है हम बने रहेंगे, तो कहीं मत जाइएगा।

कार्यक्रम सुनो सखी में सभी श्रोता सखियों का स्वागत है। सखियों, आज के कार्यक्रम में हम माँ की चिट्ठी लेकर आए हैं, जिसमें एक माँ हॉस्टल में रहती अपनी बेटी को एक चिट्ठी लिखते हुए जीवन की कुछ सीख दे रही है। वो आगे बेटी को लिख रही है कि बेटी, मुझे पता है कि घर से दूर रहना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं रहा होगा। हमें भी तुम्हारे बिना घर जो है सूना सा लगता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें आज भी हमारे कानों में और घर के हर कोने में गूंजती है। पर बेटी, क्या करना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये याद रखना कि ये वक्त तुम्हारे सपनों को पूरा करने का है, और अगर तुम अभी अपने सपनों को पूरा करोगी तो जीवन को सुख से जी पाओगी। दिल से पढ़ाई करना, वक्त का सही उपयोग करना, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वक्त पर उठना, पढ़ना और सोना, साथ ही साथ अपने खान पान का भी अच्छे से ध्यान रखना, जीवन को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जीना। सखियों, जैसा हम सोचते हैं, माँ जो है अपनी बेटी को इस चिट्ठी के माध्यम से समझाते हुए कह रही है कि वैसे ही हम बन जाते हैं। तो हमेशा अपने बारे में माँ कह रही है कि बेटी को सकारात्मक बातें सोचना। छात्रावास में तुम्हें बहुत से दोस्त मिलेंगे, पर उनसे दोस्ती करते वक्त हमेशा ये बात याद रखना कि कभी भी अपने मन की पूरी बात किसी को ना बताए। बेटी, दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, इसलिए कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। सोशल मीडिया और चमकती हुई दुनिया में अक्सर लोग अपनी सच्चाई को छिपा लेते हैं। सोशल मीडिया पर अधिक दोस्त बिना सोचे समझे ना बनाना। किसी की बाहरी चमक देखकर खुद की तुलना उससे करने की कोशिश भी ना करना। तुम जैसी हो वैसी सुंदर हो, अच्छी हो, और सबसे बड़ी बात, हमारे लिए अनमोल हो। कभी भी तुम्हें वहाँ अकेला या बेबस महसूस हो तो हमें फ़ोन करना। हो सकता है हम हर समस्या का समाधान ना दे पाएं, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहने का हम पूरा भरोसा तुम्हें देते हैं। बेटी, याद रखना, असफलता कभी जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि बिना असफल हुए हम सफलता का मूल्य नहीं जान पाएंगे। मुझे ही देखो, मैंने भी जीवन में कई बार हार देखी है। कई बार ऐसा भी महसूस किया कि बस अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हर हार ने मुझे कुछ नया सिखाया। ये सब बातें तुम्हारे सामने ही घर में हुई बीती हैं। यदि तुम भी कभी असफल हो जाओ तो उदास मत होना, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी ही असफलता से शुरू होती है। तुम फिर नए जोश से उठना और फिर से चलकर अपनी जीत को हासिल करना। माँ आगे अपनी बेटी को पत्र में लिख रही है कि बेटी, जीवन में सफलता अंकों से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे संस्कार, ईमानदारी, अनुशासन और दूसरों के प्रति उदारता से भी मिलती है। इन नैतिक मूल्यों को हमेशा अपने अंदर समाहित रखना, और कोई भी कठिनाई आए तो घबराना नहीं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बेटी, सफलता, पैसा और पहचान चाहे जीवन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा है एक अच्छा इंसान बनना। कभी भी किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम या आदत मत अपनाना। हम तो यही चाहते हैं कि तुम ऐसी इंसान बनो कि दूर से भी तुम्हें आता देखकर लोग कहें कि कितने अच्छे संस्कार हैं इसमें। इस पत्र में अंत में जो माँ है अपनी बेटी को कुछ और सीख देगी। अभी जो ये पत्र है खत्म नहीं हुआ है, तो सखियों कार्यक्रम में वक्त है मनोरंजन का, तो आपसे इस पत्र की बातों का सिलसिला यहीं पर थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और करते हैं इस गीत के साथ आपका मनोरंजन।

कार्यक्रम सुनो सखी में सभी सखियों का स्वागत है। और सखियों, आगे हम माँ की चिट्ठी पढ़ते हुए आपको बता रहे हैं कि आगे आप माँ ने अपनी बेटी को क्या लिखा है। माँ अपनी बेटी को लिख रही है कि अपनी शिक्षा और सीखने की इच्छा को कभी खत्म मत होने देना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी खुशी को अपने अंदर ढूंढना, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना और अपने सपनों को सच करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। हमें तुम पर भरोसा पूरा है। जल्द ही छुट्टियों में घर आना, हम और घर का आंगन हमेशा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जब तुम आओगी तो हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे और खूब मजे करेंगे। तुम्हें हमारा ढेर सा प्यार और आशीर्वाद। तेरे हर कदम पर खुशियों की बहार हो। मेरी बेटी, तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान हो। यह एक माँ की दुआ है, तुम्हारी माँ। सखियों, ये चिट्ठी पढ़कर सच में हमने ये महसूस किया कि माँ और बेटी का रिश्ता शब्दों से व्या नहीं होता। यह वह बंधन है जो हर जन्म में दिल से जुड़ा होता है। चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी माँ के साथ वक्त बिताएं, घूमें फिरें, खाएं पिएं और आनंद लें, क्योंकि ये यादें ही हैं जो हमेशा साथ बनी रहेंगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी इसी कार्यक्रम में किसी और दिन। तब तक के लिए अपनी रेडियो सखी एकता को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल, आप तक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया अंकित हिमान ने। इसी के साथ प्यारी सखियों, नमस्कार। खुश रहो, मस्त रहो और FM धर्मशाला के साथ व्यस्त रहो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दिन के एक बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का

0: एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan today. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The Union Home Ministry has designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. They were linked to Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Tayyaba and other organizations. These individuals were designated as terrorists for

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय गजल जानकर मुझे गीतकार गोपालदास नीरज की पंक्तियां याद आ रही हैं। लोग लिखते हैं अखबारों में छपने के लिए, हम लोगों के दिलों पर गजल लिखते हैं। बहुत खूब। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सुनने वाले के

दिल पर गीत से ज्यादा गजल का असर होता है। कभी कभी कोई बात पूरा गीत नहीं समझा सकती तो गजल का एक शेर समझा देता है। एक ही बात को कहने का हर शायर का तरीका अलग अलग होता है। जहां महबूब की तारीफ में गालिब कहते हैं कि वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, वहीं मीर तकी मीर कहते हैं, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ के सब असीर हुए। क्या खूब, बहुत सुंदर। फिल्मों में साहिर, शकील, हसरत, कैफ आजमी ने अपने गजलों के माध्यम से खूब वाहवाही बटोरी है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल शब्द अरबी भाषा के गजाल शब्द से बना है, जिसका अर्थ हिरण होता है। काव्य के संदर्भ में जब हिरण शेर के डर से भागता है तो अंत में गिर जाने पर उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गजल कहा जाता है। आपके दिए गए पैराग्राफ के आधार पर गजल का निर्माण संगीत, शायरी और भावुकता के अनूठे संगम से होता है, जो अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प और आध्यात्मिक प्रश्नों जैसे गहरे मानवीय जज्बातों को शब्दों में पिरोने से बनती है। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी नगमों में शायरी और गजलों का एक बेहद खास और गहरा इतिहास रहा है। फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों के जज्बातों को गहराई देने के लिए कई मशहूर गजलों को बेहतरीन गानों के रूप में पेश किया गया है। हिंदी फिल्मों की कुछ सबसे सदाबहार और मशहूर गजल फिल्म अर्थ है, और जगजीत सिंह इस गजल से फिल्म जगत में एक अलग मुकाम बनाते हैं। गिटार और सारंगी के बेहतरीन इस्तेमाल ने इस गजल को सुकून भरा नगमा बना दिया है, और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यह गजल क्या है, दो मिश्रों में जज्बात की जगमगाहट या बेसिर पैर की बातें। कुछ लोग मानते हैं कि इसने रब नहीं होता, मगर शायरों का मानना है कि इसमें जिंदगी होती है। मिर्जा गालिब के जमाने से पहले शुरू हुआ गजलों का दौर हमारे भारतीय फिल्मों में आज तक चल रहा है। फिल्मी गीतकार शकील बदायूनी, मजरूह, राजा मेहदी अली खान, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी जैसे लोग लिखते हैं। हमारे फिल्मी संगीतकार ने बहुत ही मधुर धुनें बनाई इनके साथ, खासकर नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम साहब, मुझे तो खासकर लता मंगेशकर जी और जगजीत सिंह की सभी गजलें जो उन्होंने फिल्मों में गाई बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, हमारे सवाल जिसका आप इंतज़ार कर रहे होंगे, हमारे सवाल हैं हमेशा की तरह दो। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो सवाल हम आपसे करेंगे, जब आप उनका जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी गज़ल को आप पसंद कर रहे हैं, वैसे तो आपको जो गीत पसंद है वो सर आँखों पर, हम उसका जिक्र ज़रूर करेंगे, लेकिन आज हमने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में वो गज़लें चुनी हैं जिसमें 5 शेर हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण है, और प्रत्येक शेर का अंत रदीफ यानी वाक्यांश शब्द यानी वाक्यांश से होता है, और जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द या वाक्यांश से होता है, और काफिया और जो रदीफ ही वही मिलकर जो है इस गज़ल को बनाते हैं, है ना, शेरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की गज़ल आप हमें बताएं जो आप पसंद करते हैं। बहरहाल मैं आपको आज के सवाल बता देती हूँ। हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत उर्दू में भी लिखे। हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने उनका नाम लिख भी दिया है गीतकारों का, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में ऐसे कौन से गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मी गीत लिखे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी, बस उन गीतकारों का नाम लिखना है। और हाँ, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारे जो फिल्मी गज़लें हैं उनकी कुछ खास पंक्तियाँ जिसने आपको, आपके दिल को झकझोर दिया हो, आपको पसंद हो, उसका जिक्र करें, यानी वो दो पंक्तियाँ हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मुझे ये पंक्तियाँ बेहद पसंद है जो अभी आपने फिल्म अदालत की सुनी थी, कि मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है, अब आप ही की खुशी से कांटों में सो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। आपको इस तरह की कौन सी पंक्तियां पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी का संगीत, बहादुर शाह जफर की रचना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म का नाम लाल किला।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आइए मित्रों चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में। आज गजलों पर बात होगी, शायरों, गीतकारों और संगीतकारों ने कैसे गजल पर अपनी कलम चलाई, कैसे संगीत बजाया और किन कलाकारों ने अपनी आवाज से गजलों में रंग भरा, यही इस सफर में आज रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उर्दू भाषा को तहजीब और अदब का प्रतीक माना गया है। उर्दू संस्कारों के इस गुलशन में गजल को सबसे मुकम्मल स्थान हासिल है। दिल तक असर करने वाले मखमली शब्दों से सजी गीत की विधा देश की हिंदी सिनेमा जगत को सराबोर किए हुए है। एक से एक बेहतरीन उर्दू गजलें हिंदी फिल्मों में पेश की गई है। किस तरह की कैसी गजलों ने मुंबईया फिल्म जगत को अपना सुहावना एहसास दिया है, इन पर प्रकाश डालने से पहले गजल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। गजल का मतलब प्रारंभिक शेर और दोहा में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं होता। यदि कोई फर्क है तो यही कि मतला कई बहरों में लिखा जाता है और दोहा एक छंद में ही। मतला और दोहा दोनों ही दो मिसरों यानी पंक्तियों से बनते हैं और गंभीर से गंभीर विचार को संक्षिप्त भाव में कहने का भाव रखते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत तरीके से गजल को समझाया है कि क्या है गजल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई है। गजल के हर शब्द में बहुत ही गहराई होती है, भावों से परिपूर्ण होते हैं। मैं तो इस सफर में गजल फिल्म नायक सुनील दत्त जी और मीना कुमारी जी के गजल सुन रंग और नूर की सौगात किसे पेश करूं मन में उतर जाती है और हर शब्द मोहम्मद रफी साहब की नूरानी आवाज भी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल भावनाओं की सबसे कोमल और गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम की मधुरता है, मोहब्बत की गहराई है, विधा की कसक है, दर्द की सच्चाई और अंतर्मन की अनकही पीड़ा। संगीत भावुकता और शब्दों की सुंदर लय से सजी गजल सीधे हृदय को स्पर्श करती है। गजल केवल पढ़ी या सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये मन की उन भावनाओं का दर्पण है जिन्हें अक्सर कह पाना संभव नहीं होता। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलें जो हैं फिल्मों में केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने के लिए रखी जाती हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही निराला होता है और उन गजलों के बीच शायरी तो जैसे सोने पर सुहागे का काम करती है जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। गजलों में अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा जाता है कि मानो वो हमारे ही मन का हाल बयां कर रही हो। तो आज का सुरीला सफर उन्हीं बेहतरीन गजलों से भरा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप गजलों को इतना पसंद करते हैं और इतनी गहराई से अपने जज्बात पेश कर रहे हैं। हमारे वो श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं वो तुरंत हमें ज्वाइन करें। www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो हमारे परिवार का, विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं मिर्जा गालिब फिल्म की गजल आवाज सुरैया की। रचनाकार मिर्जा गालिब और गुलाम मोहम्मद साहब का, यानी गुलाम मोहम्मद साहब का ये संगीत है।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा, जब तक फिल्मों में गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब का उल्लेख या कोई भी गजल न लिखी जाए तो शायद गजल को सुनने या गजल गायकी की जानकारी में कमी है, ये कहा जा सकता है। माफ करें, मेरे विचार इस मामले में अलग हैं। तलत साहब गजलों और फिल्मी गजलों के बादशाह हैं और शायद ही किसी श्रोता ने उन्हें यहाँ याद किया है। गजलों पर 10-12 कमेंट छाप दिए गए हैं बिना सोचे समझे, लेकिन गजल को किसी ने भी महसूस किया है वो नहीं दिख रहा। आज तलत साहब की गजलें शामिल होंगी, यही उम्मीद है। बिल्कुल होंगी, आप कार्यक्रम को सुनते रहिए। और आपने बिल्कुल सही लिखा कि जब गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब को याद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर मुझे लगता है कि गजलें वाकई में हमारे संगीत का एक अभिन्न अंग है। जो सुरीला सफर में आज के शब्दों पर गाने होंगे वह जरूरी दिल को छू जाएंगे। गजलें तो जैसे हमारे दिल की धड़कने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छत पर धूप का एक टुकड़ा फैला था और रिकॉर्ड प्लेयर पर लता जी की आवाज में गजल अपने ही पूरे शबाब

आपके साथ फिजाओं में तैरती है, वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गजल सुनकर कोई गहरी संवेदना मन को छूती है, ऐसे लगता है हवाओं से कोई आहट आकर मन को सहला रही है। गजल की दुनिया बहुत बड़ी है, गजल ने अपने चाहने वालों के दिलों में एक सुंदर संसार रचा है, भावनाओं का खूबसूरत संसार बुना है गजल ने, तभी तो ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जीवन की हर उदासी में, हौसले में, विश्वास में इन गजलों ने कुछ सीली सी आवाज में समझाइश दी है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक। वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही क्लासिक तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संभावित शब्द आपने लिखे हैं। अरे जब मैंने खासतौर से ये कोशिश की कि हम अपनी इबारत में शब्द कम लिखें और ऐसा टेक्स्ट लिखें जिसे आप समझ पाएं, तो आप अपने शब्द लेकर हमारे सामने आते हैं। चलिए आपके शब्द हैं गजलें, जज्बात, दिलों को शायरी, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प। बिल्कुल, जहां गजल है वहां ये भाव होते ही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजलों के लिए एक प्यारी सी बात, गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, हर शेर किसी न किसी दिल की कहानी कह जाता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि संगीत की सृजनात्मक श्रृंखला में पुनः बिखरे मोतियों को एकत्रित कर नई माला में पिरोकर सफर को नई मनोरंजक दिशा प्रदान करती हुई इबारत है आज की। गजल मन को स्पर्श कर दिलों को झंकृत करती है, कहीं प्रेममय दिलों के तारों को छेड़ती है तो कहीं टूटे दिलों के जख्मों पर मरहम का काम करती है। गति धीमी मगर असर गहरी करने में गजल दिलों को वो मंजिल प्रदान करती है जिसकी तलाश में तन्हा दिल हसरतें रखता है। गजलों में सुरीला सफर गुजारने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही गहराई से अपनी इबारत हम तक पहुंचाई है। तो हमारे सवाल आपको याद है ना, हमने आपसे पूछा था कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उतने ही निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि फिल्मी गजलों में कुछ खास पंक्तियां जो आपके दिल को छू गई हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं आप। और अब पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। फिल्म का नाम है ममता, गायिका लता मंगेशकर, इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म ममता की ये गजल सुनी। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत केवल एक लेख नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास की एक सच्ची समझ है। ये लेख सिनेमा और शायरी के गहरे रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लेखक ने इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि गजलें फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि किरदारों की खामोश जुबां होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर गजलों के साथ है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैं तो सिर्फ दर्द दिल की बात सुनाता हूँ। हिंदी फिल्मों में बहुत से गीत ऐसे हैं जिनका मूल रूप उर्दू रूप थोड़ा सा अलग होता है। मिर्जा गालिब जाने माने गजलकार हैं। साहिर, लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी ऐसे बहुत से शायरों ने अपनी गजलें फिल्मों के लिए दी हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, ये मेरी सबसे प्यारी गजल है। आज के सुरीले सफर में इस गजल को शामिल करने की मैं मंदाकिनी से प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो मेरा दिल इस प्रोग्राम में नहीं लगेगा। अरे, हमने तो इस फिल्म की दूसरी गजल आपको सुनवाई और हम उम्मीद करते हैं वो गजल आपको पसंद आई होगी। न किसी की आँख का नूर हूँ, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल दिल के भावों को, दुख और प्रेम को बयां करती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज सुरीला सफर में गजलों की बारिश होगी। फिल्मी और गैर फिल्मी गजल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिल्मों में गजल के माध्यम से अंतर्मन के सभी उद्गारों को व्यक्त करता है। शांत वातावरण में गजल को सुनने का एक अलग ही मजा है। बाकी आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजल सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके रात के सन्नाटे में और भी सुकून मिलता है। गजल का नाम लेते ही पहला नाम जगजीत सिंह जी का आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक लोकप्रिय काव्य और संगीत शैली गायन शैली यानी गजल, जो स्वतंत्र दोहों की लयबद्ध तुकबंदी होती है, दोहराए जाने वाले भाव, मीने शब्दों की अदृश्य श्रृंखला यानी गजल, जिसे जादुई आवाज, शब्द उच्चारण और बेमिसाल स्वाभाविक अदायगी से अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत अभिजात गजलें दिखाई देती हैं जिसका जिक्र करें समझ में नहीं आता। एक बात सच है कि आज हमें लता जी, आशा जी, रफी जी के साथ तलत महमूद, पंकज उदास, हरिहरन, गुलाम अली जैसे बहुत सारे कलाकारों की शायद आवाज़ें सुनाई देने वाली हैं। और आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज गजलों की विदा पर प्रोग्राम लेकर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। जो गजल भूली बिसरी यादों में है सुनने को मिलेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी अपनी पसंद की गजल हम तो हैं, पर देश में निकला होगा चांद। अच्छा, ये गजल आपको बेहद पसंद है जो अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाती है, ये दौलत भी ले लू वाली। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गजलें सुनने को मिलने वाली हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, आप इतनी गहराई के साथ अपनी इबारत पेश कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं, शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना है, तलत महमूद की आवाज़ है, फिल्म का नाम पतिता यानी पतिता फिल्म की ये गज़ल।
1: सबसे

तलत महमूद की आवाज थी और फिल्म का नाम था पतिता। और दोस्तों, ये शुद्ध हिंदुस्तानी गजल जिसमें उर्दू का कोई अंश नहीं था, आपने अगर इसको ध्यान से सुना होगा तो महसूस भी किया होगा। और शैलेंद्र सबसे जटिल अवधारणाओं को जो कि सरलतम भाषा में व्यक्त करने में माहिर थे, उन्होंने मतलब जटिल से जटिल बात को वो कितने सरल शब्दों में कहते थे, इस गज़ल में हमें नज़र आता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी ये जो कविता है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वो लिखते हैं हमारे सबसे मधुर गीत में है वो जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुरों में गाते हैं। तो ये गीत एक ऐसे साथी को सांत्वना और दिलासा देता है जिसने बहुत दुख झेला है और जिसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे प्यार का दूसरा मौका मिला है, है ना। तो देखिए ना कितना सुंदर तरीके से शैलेंद्र ने इस गज़ल को रचा।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं कि फिल्मी गजलों के अलावा भी गैर फिल्मी गजल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलहत अजीज की गाई जो गजलें हैं हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि गजलों के बादशाह मदन मोहन पहले नंबर पर ही आए, लता मंगेशकर, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, यूं हसरतों के दाग, ये गजल बहुत ही पसंद थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर छेड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वह क्या शुरुआत है, आनंद को बयां करना मुश्किल है आज, मदन मोहन फिल्मी गजल में उनका कोई सानी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तलत साहब का गाया हुआ ये गम है दिल क्या करूं और ये क्या जगह है दोस्तों, गजल बहुत पसंद है। वहीं हमारा एक सवाल था कि जो अधिकांश हिंदी गीतकार हैं वो कौन कौन है जिन्होंने उर्दू में भी लिखा है। हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, बहुत खूब। और एक श्रोता लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे गीतकार हैं, राजेंद्र कृष्ण। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, लता जी, तलत अजीज़ की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार और जावेद अख्तर साहब इस श्रेणी में आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा करते थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गुलाम अली साहब की, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बड़ी बारीकियां सजोई है आज के कार्यक्रम में, गजलों के रदीफ, काफिया, मिसरा, गजब है आज का कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज।

राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान, ये सभी हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1837 से 1857 तक शासन करने वाले भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, इनके जो गजल है वो इन्हें बहुत पसंद है। वहीं राजेंद्र कृष्ण और साहिर लुधियानवी को लोग हिंदी और उर्दू में ज़्यादा पसंद करते हैं। और न किसी की आँख का नूर हूँ, इस गज़ल को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वो कह रहे हैं कि ये गज़ल हमारे दिल के बहुत करीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, निदा फाजली, जावेद अख्तर और गुलजार साहब इस श्रेणी के गीतकार हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल चीज़ क्या है, आप मेरी जान लीजिए, ये जो बोल हैं वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गैर फिल्मी गज़ल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गज़ल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गज़ल न किसी की आँख का नूर हूँ, ये बहुत ही प्यारी गज़ल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आई सुनते हैं आरजू फिल्म की ये गज़ल, आवाज़ तलत महमूद साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, अनिल बिस्वास का संगीत।

तलत महमूद को अभी आपने सुना फिल्म आरजू में। हम आपको बता दें ये 1950 की फिल्म थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद आती है। साथ ही तुमको देखा तो ये ख्याल आया और दिखाई दिए यूं कि खुद बेखुद किया, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल आज शायर है गम एक नगमा, ये पंक्तियां हमें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बेकरारी का आलम न पूछे महोदया, कार्यक्रम सुनने के लिए हमने क्या क्या किया। अरे

वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई ही गई, गजल के हर शब्द में बहुत गहराई होती है और आपने एक गज़ल का जिक्र किया है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताना चाहूँगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, चंदन दास की ये जो गज़ल गैर फिल्मी गज़ल है ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भरत व्यास के सुमधुर नायाब कर्णप्रिय गीतों से सजी आज की यादों की महफिल थी, ये कार्यक्रम भी हमें बेहद पसंद आया। एक श्रोता ने लिखा है कि गज़ल पहले विशिष्ट लोगों की महफिल में ही गाई जाती थी और आम जनता के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं थी, पर इसे सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय करने का काम जगजीत सिंह और पंकज उधास ने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं मंदाकिनी जी, जहाँ फिल्मों की एल्बम में हम बात करें तो हमने लाइव ऑडिटोरियम में हमने सुना है, मतलब लाइव प्रोग्राम सुना है किसी ऑडिटोरियम में, और गज़ल के दीवानों के दिलों को सीधे छू लेता है, इसे सुनने का आनंद तब आता है जब हम एकांत में आंखें बंद करके सुनते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे गज़लें अंतर्मन की पीड़ा तन्हाई और प्रेम को गहराई में उतार रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तलत महमूद की गाई सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गज़ल फिर वही शाम वही गम, जो वो अपनी मखमली और थरथराती आवाज़ में गाते हैं, वो इन्हें बेहद पसंद आती है। इस तरह से हमारे श्रोता अपने अपने पसंद का जिक्र कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां आरा फिल्म की तेरी आंख के आंसू पी जाए ऐ मेरी तकदीर, ऐसी मेरी तकदीर कहां, ये हमें बेहद पसंद आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिल्म गज़ल की ये गज़ल मैं आपको सुनवा रही हूँ। बोल है नगमा और शेर की बारात की से पेश करूं। और एक बात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अक्सर हम इस फिल्म का जो गीत है रंग और नूर की बारात की से पेश करूं, इसे हम गज़ल समझते हैं और हमारे कई श्रोताओं ने इसकी फरमाइश भी की है कि ये हम सुनना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये गज़ल नहीं है, अगर मतलब आपने कभी इसके बोलों पर ध्यान दिया हो तो आपको पता भी चलेगा कि ये दो पंक्तियों के छंदों में नहीं है, बल्कि इसका जो दूसरा गीत है नगमा और शेर की सौगात, जो मैं अब आपको सुनवाने वाली हूँ, हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गज़ल की शर्तों में आती है, ये गज़ल उस नियम वो दायरा जो है गज़ल का उसके अंतर्गत आती है। तो आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की लिखी ये गज़ल, फिल्म का नाम गज़ल, आवाज़ लता मंगेशकर की, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था गजल। और अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी के विचार, आप सभी की पसंद हमें जानने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अब अंत में हम ये बताना चाहेंगे, खासतौर से मैं, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस शायर की कौन सी पंक्ति आपको पसंद है, तो मैं कहूँगी बहादुर शाह जफर की ये पंक्तियाँ मुझे आज भी अंदर तक भिगो देती हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी न मिली कुएं यार में। इस पंक्ति को जब मैं पढ़ती हूँ, जानती हूँ, महसूस करती हूँ, तो आँखों से अश्रु अपने आप बह निकलते हैं। आपने भी अपने विचार रखे, अपने पसंद की पंक्तियाँ, अपने पसंद के गीतकारों का जिक्र किया, गज़ल क्या है आपने उसको महसूस किया। आज के इस कार्यक्रम को, इस सफ़र को महसूस करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम त्रिवेणी। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। बद्रा, ये शब्द सुनते ही मन में सावन की भीगी भीगी तस्वीर उभर आती है। आकाश में तैरते ये मेघ केवल जल की बूंदे नहीं लाते, बल्कि अपने साथ अनेक भावनाएं भी लेकर आते हैं। तपती धरती को शीतलता देना हो, सूखे खेतों को हरियाली से भरना हो, या फिर प्रकृति को नया जीवन देना हो, बद्रा हर बार अपनी अनोखी भूमिका निभाते हैं। दूर क्षितिज पर उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं किसी उत्सव की तैयारी कर रही हो। उनकी छाया में पेड़ पौधे झूम उठते हैं और हवाओं में एक अलग ही ताजगी घुल जाती है।

भारतीय साहित्य, संगीत और लोकगीतों में भी बद्रा का विशेष स्थान रहा है। कभी इन्हें प्रेम का संदेश वाहक माना गया तो कभी विरह की वेदना का साथी। गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों की सड़कों तक बद्रा का आगमन हर किसी के मन में एक नई उम्मीद जगा देता है। बच्चों के लिए ये कागज की नावों का मौसम होता है, किसानों के लिए समृद्धि का संकेत और कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। यही कारण है कि बरसात और बादलों का जिक्र आते ही मन अनायास ही गीतों और कविताओं की दुनिया में खो जाता है।

बद्रा हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन कितना आवश्यक है। जैसे सूने आकाश को बादल सजाते हैं, वैसे ही आशाएं और सपने जीवन को अर्थ देते हैं। वे आते हैं, बरसते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अपने पीछे ताजगी, हरियाली और यादों की एक लंबी श्रृंखला छोड़ जाते हैं। शायद यही वजह है कि हर वर्ष सावन के साथ लौटने वाले बद्रा केवल मौसम का हिस्सा नहीं लगते, बल्कि किसी पुराने मित्र की तरह प्रतीत होते हैं, जिनकी प्रतीक्षा पूरे वर्ष बनी रहती है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये

0: बाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज CG सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा

0: देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहां के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोंसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

0: लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार गीता दत्त और हेमंत कुमार, फिल्म का नाम डिटेक्टिव।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिए।

0: बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का दो गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और मोहम्मद रफी हैं, शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।
1: मोहब्बत का हाथ।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म फागुन का गीत सुना। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा था और ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी रिले की जाएगी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान से संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया। 28,840 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इस योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में विमानन आधारित विकास के अगले चरण को गति देना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार होने जा रहा है। इस उद्देश्य से 16 व 17 जुलाई को धर्मशाला में कांग्रेस

0: पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आज शिमला में हिमाचल कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की आम सभा में हिस्सा लेने पहुंची प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल पर अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने सहित कांग्रेस के आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर आज बैठक में मंथन किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और मंत्रियों सहित अग्रणी संगठनों के प्रमुख मौजूद रहे।
1: कल हम हर एक फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन और फिर 16 और 17 को अभी निश्चित नहीं है, हमारे जो हाईकमांड है वेणुगोपाल जी वो धर्मशाला आएंगे और वो सभी हमारे पीएससी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है उनके साथ बात करेंगे।
0: प्रदेश के कुछ इलाकों में बीती रात से मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन से प्रदेश की 49 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 3 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। राज्य में वर्षा से पेयजल की 23 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़कें बंद होने, भूस्खलन और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत व बहाली कार्यों में किसी तरह की देरी न हो। मौसम विभाग ने आज सोलन और सिरमौर जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष अन्य जिलों में मॉनसून की सामान्य बारिश होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि लगातार सरकार का फोकस इस बार पिछले वर्ष जैसी स्थिति से बचने पर है। उधर जिला कांगड़ा में मॉनसून की सक्रिय होने और लगातार हो रही भारी बारिश के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बीते 3-4 दिन से लगातार बारिश के कारण जिले के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए कांगड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से नदी नालों, खड्डों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।
2: प्रकार से अभी बारिश जो है वो शुरू हो गई है, मॉनसून दस्तक दे चुका है और पिछले 3-4 दिन से जो है लगातार काफी ज्यादा बारिश हुआ है। धर्मशाला और इसके आसपास कुछ देखी गई है तो नदी नाले अभी जो है उफान पर आ चुके हैं और स्पष्ट निर्देश जो है इसमें रहेगा, चाहे वो पर्यटक हैं चाहे स्थानीय लोग हैं, भी नदी नालों के आसपास जाने से परहेज करें। इवन जो जानवर वगैरह चलाने के लिए लोग जाते हैं तो वो भी परहेज करें, ताकि किसी प्रकार का जानी माली नुकसान जो किसी को भी ना उठाना पड़े।
0: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र शिक्षक 10 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा देश भर के पात्र शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन स्व नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपने समर्पण, नवाचार एवं उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑनलाइन स्व नामांकन पोर्टल 15 जून से खुल चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है ऊर्जा संकट के बीच आम नागरिकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास। वाचक स्वर है राकेश शर्मा का।
0: अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता देखने को मिली। कई देशों में कच्चे तेल और रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई और कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे समय में भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता देश के नागरिकों को राहत देना और आवश्यक ईंधन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना रही। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार ने शुरुआत से ही ये तय किया कि किसी भी भारतीय परिवार को रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल जैसी आवश्यक ऊर्जा सेवाओं की कमी का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों और विभिन्न राज्यों के बीच लगातार समन्वय स्थापित किया गया। पूरे देश में ईंधन की उपलब्धता पर नियमित निगरानी रखी गई, ताकि कहीं भी आपूर्ति बाधित न हो। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रसोई गैस यानी एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद भारत ने कई देशों से वैकल्पिक व्यवस्था की और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए।

0: रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए, जिससे देश में गैस की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि घरेलू उपभोक्ताओं तक रसोई गैस समय पर पहुंचे। इसके लिए वितरण व्यवस्था को मजबूत किया गया और डिजिटल सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया गया, ताकि गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। इससे जरूरतमंद परिवारों को समय पर गैस सिलेंडर मिल सके और किसी भी क्षेत्र में कृत्रिम कमी पैदा न हो। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को विशेष राहत दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद सरकार ने सब्सिडी का भार खुद वहन किया, जिससे गरीब परिवारों तक रसोई गैस कम कीमत पर पहुंचती रही। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य ये था कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के रसोई घर पर बढ़ती वैश्विक कीमतों का सीधा असर न पड़े। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की, जिससे आम उपभोक्ताओं पर कीमतों का अतिरिक्त बोझ कम हुआ। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने भी कई अवसरों पर बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा स्वयं वहन किया। इसका लाभ सीधे वाहन चालकों, किसानों, परिवहन क्षेत्र और उद्योगों को मिला। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कई अन्य देशों की तुलना में सीमित रही। इसका कारण समय पर लिए गए नीतिगत निर्णय, विभिन्न देशों से तेल आयात की व्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला का बेहतर प्रबंधन रहा। इससे आम नागरिकों को राहत मिली और दैनिक जीवन पर ऊर्जा संकट का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बताया कि देश में ऊर्जा आपूर्ति केवल भंडार पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि एक मजबूत वितरण प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है। भारत में रिफाइनरियों, पाइपलाइन नेटवर्क, आयात टर्मिनलों, डिपो और 1,00,000 से अधिक पेट्रोल पंपों का व्यापक नेटवर्क है। यही व्यवस्था संकट के समय भी देशभर में ईंधन की नियमित आपूर्ति बनाए रखने में सहायक बनी। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल वर्तमान स्थिति को संभालने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए लगातार काम किया। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कच्चे तेल के आयात के स्रोतों में विविधता लाई है। अब देश पहले की तुलना में अधिक देशों से तेल आयात करता है। साथ ही पाइपलाइन नेटवर्क, भंडारण क्षमता और ऊर्जा अवसंरचना का भी लगातार विस्तार किया गया। पुरी के अनुसार इन प्रयासों का परिणाम यह रहा कि देश में कहीं भी ईंधन की व्यापक कमी या राशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। आम लोगों को सामान्य रूप से पेट्रोल पंपों पर ईंधन और गैस एजेंसियों से रसोई गैस उपलब्ध होती रही। सरकार का प्रयास यही रहा कि नागरिकों का दैनिक जीवन सामान्य बना रहे और उद्योगों तथा परिवहन व्यवस्था पर भी न्यूनतम प्रभाव पड़े। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सुदृढ़ता को और मजबूत करेगा। स्वच्छ ऊर्जा, घरेलू उत्पादन, आधुनिक भंडारण व्यवस्था और बेहतर वितरण प्रणाली पर लगातार निवेश किया जा रहा है, ताकि भविष्य में यदि वैश्विक स्तर पर किसी प्रकार की चुनौती उत्पन्न हो तो उसका प्रभाव देश के नागरिकों पर कम से कम पड़े। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की समयबद्ध नीतियों, मजबूत ऊर्जा अवसंरचना, सभी संबंधित संस्थाओं के समन्वित प्रयासों के कारण भारत ने कठिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी अपने नागरिकों को आवश्यक राहत उपलब्ध कराई। उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता आगे भी यही रहेगी कि हर भारतीय परिवार को उचित मूल्य पर ऊर्जा उपलब्ध हो और देश की ऊर्जा सुरक्षा निरंतर मजबूत होती रहे। इसके साथ ही ये सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का, आकाशवाणी मुंबई से।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। ये हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। ये खत हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, थोराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने। ज़िला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

यह अवस्थ थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गुलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गुलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस, बिमला, सतीश, अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर का, और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दो गाना।

0: इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहेगी।
0: दोस्तों, आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मधमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने

0: सविता का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
1: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सके।
0: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
2: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
3: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई हैं। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
2: ओह, हमारे साथ ये यज्ञ सेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीर सेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
0: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था। और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ ही लिया। संगीतशाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राजप्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: देखा
1: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं

0: इस गीत के बहाने अपने आप को आप पर न्योछावर कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि नाथ विवश हूँ पर अपनी ही समझो।
2: मालविका अब तू जा।
3: ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर देखिए।
4: मैं क्या पूछूं जी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
1: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
2: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
4: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
1: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
3: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
2: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
3: दे दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
2: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अब इसे अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
5: जो आज्ञा।
3: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
1: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
3: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि वैद्य ही अपने पास ही औषधि भी दे।
2: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
1: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
2: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्या का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्यपुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण हो।
4: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहज सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया, मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवा की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सकें।
4: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: हम घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में

0: निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ
1: अरे मालविका तुम आ गई।
2: दासी सेवा में उपस्थित है देवी। पांव में क्या बहुत कष्ट है?
1: इस दुष्ट गौतम के नटखटपन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पाँव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती।

0: अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
1: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
0: तो तुम बकुला बालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
1: जो आज्ञा।
0: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।

0: तुम बकुला बालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
1: जो आज्ञा।
0: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
2: और कहा ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रोग। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं वे उतने ही कठोर होते हैं।
3: महाराज तनिक धीरे से काम लीजिए। आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
2: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा। आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा।
3: चलिए झूला गृह की ओर।
2: झूला गृह की ओर?
3: हाँ हाँ। अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
2: हाँ मान तो ली थी परंतु
3: कैसी अचरज की बात है कि
2: क्या हुआ।
3: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है।
2: क्या क्या मालिका आ रही है?
3: और क्या।
2: तो सब जो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
3: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
2: आहा, ये सीधे सादे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हें गिने फूल बचे रह गए हों।
3: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज।
2: मित्रों को ऐसा ही सूझा करता है। अरे मालिका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
3: लेकिन महाराज अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
2: मित्र हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
4: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ दे तू मिलने की आशा। अरे हृदय तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है और ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। मुझे यूं सताकर तुझे क्या मिल रहा है।
2: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है। मित्र इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है।
3: महाराज आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायका बकुला बालिका उसके पास पहुंच गई।
2: अरे ये बकुला बालिका साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है।
3: अरे आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
2: अच्छा तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
3: और नहीं तो क्या आपके लिए।

सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं। लो सखी, हृदय ये सम्मान पाकर

0: व्यर्थ भूल मत जाना। सखी, तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
1: वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
0: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो।
1: हाँ।
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
3: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप भी अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
2: मनचाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे निपुणिका, आर्यपुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
4: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे, आइए उन्हें ढूंढें।
0: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
4: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेंगुलता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
4: अरे ये क्या स्वामिनी?
0: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
4: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है?
4: देवी तनिक उधर देखिए, उधर वहां अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
0: हैं? मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
4: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूप पर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
0: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
4: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
0: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साथ श्रृंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
5: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
0: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी, ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
5: सच सच कह दूं,
6: ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
0: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
5: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ।
0: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
5: आहा हा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है।
0: लाओ अपना दूसरा पैर तो
5: भी।
0: मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
5: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
0: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
5: मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए।
0: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
5: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
0: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है।
5: हाँ क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
0: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
5: सच? पर सखी उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
0: अरे पगले, भौरों के डर से कोई कानों में आम्र मंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों

0: पैरों में नूपुर पहना दूं? लो, अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो। अरे, क्या सोच रही हो?
1: सखी, यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
0: अरे, मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
2: वाह बकुलावली का वाह! मित्र, बकुलावली का ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
3: महाराज, उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
2: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं, ये अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
3: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
0: आई गौतम, महाराज भी
3: क्यों रही बकुलावली का? सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
0: आर्य गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की थी, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं।
2: अच्छा, तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
3: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
2: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसलय कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
1: सखी, महारानी को जाकर सूचना दी कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने।
0: अरे, पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले
2: भद्री।

0: बकुला वालिका, वाह मित्र, बकुला वालिका ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
1: महाराज उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
0: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं, ही अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
1: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
2: आई गौतम, महाराज भी
1: क्यों रही बकुला वालिका, सब कुछ जानते हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
2: आर्य गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
0: अच्छा तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
1: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
0: क्यों भद्रे, तुम्हारा ये किसलय कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
2: आप सखी, महारानी को जाकर सूचना दी कि उनके आज्ञा अनुसार हमने। अरे पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले
0: भद्रे।
3: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
4: मंदाकिनी जी नमस्कार, मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
3: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव
4: जी,
3: आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
4: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती है।
3: बिल्कुल।
4: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी, वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी, तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी, तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर, उसमें भी सलमान भाई थे।
3: हाँ हाँ।
4: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला, तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
3: बिल्कुल।
4: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
3: हाँ।
4: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है क्योंकि दोनों गाने वही थे।
3: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की,
4: नहीं,
3: थी कि चुनरिया पर ही
4: नहीं,
3: गीत
4: नहीं। मैंने खुद लिखा, उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
3: आपस का
4: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5000 चुनरिया तो नहीं है। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि एक जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी।

0: ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा, दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग,
1: हाँ
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊँगा, लेकिन एक बात मैं बताऊँ उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बैल बजाई तो दरवाज़ा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: को
1: सर,
0: हो जगह ही रहता था
1: अरे
0: मतलब, और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज़ आई कि कंप्लीट हो गए गाने, कि हाँ ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुन दिया
0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: वो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था, इत्तेफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया, हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने
0: जी
1: कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए।
0: जी
1: इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा।
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए लेकिन मैंने सीखा बहुत, और सीखने की हद यहाँ तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो ना ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूज़िक डायरेक्टर को लूँ। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूज़िक डायरेक्टर और राइटर का
1: जी
0: अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी जी
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, क्या रे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है, मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना कोई बात नहीं, उसमें क्या
1: हाँ
0: है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया। और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना
1: मानना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी, मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया, और एक दिन मुझे फ़ोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज़ उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंदर जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा,
1: जी
0: क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: सही
0: देखिए
1: बात
0: रविंदर
1: है।
0: जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे कभी भी बांद्रा, जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं
1: जी
0: सकते।
1: जी जी
0: तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे

0: तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा,
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
1: हाँ,
0: हैं,
1: भूख
0: भूखे
1: लगी
0: प्यास लगी
1: होगी
0: होगी, और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन
1: बहुत।
0: बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब।
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ,
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा
0: मैं
1: जी,
0: बेचैन हो गया। हमने
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया।
1: अच्छा,
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर।

0: और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे 5 गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊँगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए
1: जी।
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया। और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है।
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: हलचल और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था नीले पीले फूलों में तू है, ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का। और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार विजू
0: शाह। पहली बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था। तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना।
1: हाँ।
0: दावा नहीं कर सकते
1: जी,
0: अपन
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है
1: ओहो।
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना DAV जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी।
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ।
0: मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेज को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: ही खूबसूरत गाना था
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और
1: गया।
0: मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ। ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें ना जानने को मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाकिनी जी आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बम्बई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा और हम लोग काम करेंगे।
1: जी।
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है।
1: अच्छा।
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था मेरे को एक दिन बोले गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे गाड़ी में बैठे हुए। तो मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो।
1: हाँ।
0: मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार। ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त।
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
1: बिल्कुल।
0: बोला मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के कितने हैं?
1: बहुत।
0: तो सर ये बनाते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है।
0: फिर मैंने दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है, और क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है।
1: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहां एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कोई चीज को
0: हाँ,
1: क्रिएट कर रहे
0: लेकिन
1: हैं।
0: नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है, तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बट ऐसा भी काम करना पड़ता है। वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊँगा और मैं आपके साथ करूँगा।
1: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ
0: मैं
1: जाऊंगा,
0: आ
1: वक्त
0: जाऊंगा, तब
1: दूंगा।
0: वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था, तो उसमें अगम निगम साहब, वो
1: सोनू
0: गाना
1: निगम जी के पिताजी,
0: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा, हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है, इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई, और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज़ में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे, और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: उसमें कोई
1: बहुत
0: बात
1: बड़ी
0: नहीं
1: बात
0: है।
1: आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार, उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए,
0: जी
1: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं हैं और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है
0: नहीं
1: आपने,
0: नहीं नहीं
1: और
0: नहीं
1: आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना,
0: हाँ जी
1: तो
0: जी
1: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
0: ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है
1: हाँ
0: वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज़ पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
1: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें
0: नहीं
1: आपके
0: नहीं
1: गीतों
0: नहीं
1: को?
0: नहीं नहीं अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है,
1: हाँ
0: जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है,
1: हाँ
0: तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
1: वो लिख
0: उसको
1: लेता
0: ले
1: है।
0: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
1: अच्छा
0: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता। हमने
1: अच्छा
0: फ़ायदा क्या इसका है, तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है।
1: हाँ
0: तो अभी मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुँह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो क्या, अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज़ नहीं है, मैं सक पका गया। और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले, तो वो गाना गोरख भाई ने

0: तो
1: मैंने
0: हाथों
1: ये
0: हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
1: बिल्कुल
0: आपको
1: लिखवा देता हूँ।
0: सिचुएशन बतानी पड़ती है ये एक्टर
1: हाँ,
0: है
1: जो
0: ये
1: भी
0: एक्ट्रेस है,
1: सिचुएशन बताएंगे
0: बहुत खूबसूरत।
1: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
0: हर रिकॉर्डिंग में आप
1: हर
0: रहते
1: रिकॉर्डिंग में
0: हैं।
1: मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग खोते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है, मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीज़ें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
1: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी,
0: नहीं।
1: लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
0: अच्छा।
1: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है।
0: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
1: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की, और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं।
1: जी
0: इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं, और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली,
0: जी
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूँ और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे
0: जी
1: केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ। वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
0: जी
1: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से,
0: उड़ली।
1: ओडली
0: अच्छा, यहां पर भी
1: म्यूजिक,
0: चुनरी आई।
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए
0: अच्छा
1: और हम लोग घर पे गए। तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र अभी आप कर
1: जिक्र
0: रहे थे।
1: किया। तो मैंने कहा यार सतीश जी मेरे लिए इतना काम कर दो यार। उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं
0: अच्छा,
1: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी हैं ना, जैसे सतीश जी कई बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूँ, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूँ, जो है
0: जी
1: वो है।
0: जी जी
1: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूँ क्या पैसा।
0: हाँ
1: तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मज़ा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए यार कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो
0: क्या
1: मेरे को
0: बात है,
1: यकीन नहीं हुआ
0: बात
1: कि
0: करो,
1: अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं
0: 1 रुपया
1: 1 रुपया नहीं
0: नहीं
1: लूंगा।
0: लूंगा। वाह, अद्भुत
1: ये बहुत ही अद्भुत,
0: बात।
1: और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदरकांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदरकांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता

0: जो आजकल लोगों में आ गई हैं,
1: जी
0: लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ।
1: बहुत
0: और मैं ईश्वर
1: सही,
0: से दुआ करता हूं
1: सैल्यूट है
0: कि
1: उन्हें।
0: बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम।
1: बिल्कुल
0: ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: उन्होंने क्लियर किया
1: कि मैं कुछ नहीं लेने
0: मैं कुछ
1: वाला।
0: नहीं लेने वाला,
1: बहुत बड़ी बात सर,
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई हैं और मैं भावुक हो गई हूँ।
0: नहीं,
1: एक गाना पहले सुन लेते
0: एक
1: हैं।
0: गाना हम लोग सुनते हैं। मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी।

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना,
0: गाना नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा फिर? तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा? हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था

0: उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं
1: अरे
0: मिला गुलजार साहब को उस साल का
1: जी
0: मिला।
1: जी
0: तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे
1: हाँ
0: एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से
1: वहां
0: हुई,
1: से हुई।
0: हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: नहीं,
0: और मैं
1: आपने
0: बस
1: उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि
0: हाँ,
1: मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता
0: वो
1: हूं।
0: हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना,
1: हाँ जी जी
0: तो
1: जी
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं
1: बहुत सुंदर
0: और वो
1: गा
0: हो
1: रहे हैं ये
0: गया।
1: सुधाकर जी। गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को। क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं,
1: अच्छा,
0: बट
1: लेकिन
0: AI जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला
1: बिल्कुल,
0: पाएगा,
1: सबसे बड़ी
0: वो
1: बात ये।
0: कहानी नहीं ला पाएगा,
1: वो साउंड
0: टेक्निकली
1: कर
0: वो
1: देगा।
0: साउंड कर देगा लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के
0: जी
1: निर्माता
0: जी
1: नए नए आ रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं,
0: हाँ
1: बहुत
0: बहुत
1: नए
0: बिल्कुल
1: सब्जेक्ट के
0: बिल्कुल।
1: साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तभी आज तक काम कर रहा हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोर्ड पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फूहड़ पन्ने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे तरीके
0: लेकिन बड़े
1: से,
0: प्यार से कहा, एक
1: क्लासिक
0: अंदाज से
1: तरीके
0: कहा,
1: से।
0: क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज़ को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, 5 पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और
0: जी जी
1: ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: हाँ वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
1: जी
0: देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध
1: चाहिए।
0: तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
1: बिल्कुल।
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है,
1: बिल्कुल।
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही। तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस, काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी, मैं अगर आपको बताऊं

0: तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया, ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
1: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया।
0: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया,
1: दूसरे गाने का?
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए।
1: हो
0: 97 में गाना बाहर आया, ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप
1: पेशेंस।
0: डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
1: जी
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ
1: अच्छा।
0: तो कंजकें बिठाते हैं उसमें, और उसमें कोई 300 350 रुपये का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला, ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूँगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया। एक स्टूडियो था क्लासिक, वहाँ पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहाँ गया। मैं घुस रहा हूँ और मेरे जेब में फ़ोन बज रहा है और मुझे फ़ोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और मैं था, अरे यार मैं तेरे को ही फ़ोन लगा रहा हूँ, तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूँ, तब तक तू आ गया। वह जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, 3 गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए, अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, वो चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपये थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो
1: बिल्कुल।
0: तो कुछ ना
1: आपसे
0: कुछ
1: बात
0: होगा।
1: करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी,
0: जी
1: और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं। इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी। और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा है, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे, और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सब से मैं मिला हूं।
1: जी, और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं। आप
0: धन्यवाद
1: विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को
0: जी
1: हम बोलते हैं कि चलिए, गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया,
0: जी
1: आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: जी और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: जी तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था

FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी भजन।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी भजन। मन्ना डे की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे, सीमा फिल्म से लिया गया ये भजन। आप लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को।

नरेंद्र चंचल, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये माता की भेंट सुनी। अब लीजिए सुनिए कल्याण जी, आनंद जी, अजीज और कंचन के युगल स्वरों में ये भजन, जिसे हमने लिया है फिल्म रफू चक्कर से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच।

तो युवा साथियों, आज के युवा मंच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ नर्मदा शर्मा, और आपको पता है कि आज है शनिवार, और शनिवार को हम बात करते हैं अपने जीनियस से। हेलो जीनियस, तो इस कार्यक्रम में आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ प्रश्न और कुछ पहेलियाँ, तो उनके भी जवाब आपको देने हैं। और सबसे पहले आपको बता दें, जो श्रोता पहली बार जुड़ रहे हैं या नए हैं, तो उनको हम बता दें कि आज आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 01892224391। और तैयार होके कॉल कीजिएगा। आज हम अपने जीनियस जो हैं उनकी परीक्षा होगी, और जब तक कोई हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: हेलो हेलो जी, स्वागत है आज के युवा मंच कार्यक्रम में।
1: हेलो,
0: हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सांझी बोल रही हूँ। 9th क्लास में। हाँ
0: 9th क्लास में हैं आप?
1: जी,
0: अच्छा, नाम एक बार फिर से बताना। सानवी?
1: हाँ जी, हाँ
0: सानवी ना नाम?
1: जी।
0: अच्छा, 9th क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या पूछें आपसे? कुछ प्रश्न पूछें या पहेली पूछें?
1: पूछ लो कुछ भी, पहेली पूछ लो, प्रश्न पूछ लो।
0: अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, वह कौन सी चीज़ है जो आपकी है लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो आपसे ज़्यादा दूसरे लोग करते हैं? कोशिश करिए।
1: मैं सोच रही हूँ। अच्छा,
0: अच्छा
1: सोच रही।
0: 9th क्लास में है ना आप?
1: नाम?
0: हाँ बिल्कुल सही, आपका नाम आपसे ज़्यादा, मतलब आप तो सिर्फ तभी बोलती होंगी ना जब किसी ने आपका नाम पूछा है, जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है ना,
1: हाँ जी,
0: और बाकी तो पूरा टाइम और घर वाले या बाहर जो भी हैं वही बुलाते होंगे। बहुत अच्छे, आप तो सच में बहुत जीनियस निकली। अच्छा अपने बारे में बताइए और कुछ, क्या शौक रखती हैं?
1: मुझे गाने सुनना पसंद है।
0: सुनना पसंद है, सुनाना भी पसंद है क्या?
1: मुझे
0: अच्छा, और पढ़ाई में कितना मन लगता है आपका?
1: लग जाता है। ठीक,
0: 9th में है ना, तो कौन सा आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है?
1: साइंस
0: हाँ जी,
1: साइंस।
0: साइंस। अच्छा, और सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, कुछ उसमें भी है इंटरेस्ट? नहीं,
1: नहीं, सोशल साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं है।
0: इतना नहीं है। अच्छा ठीक, तो आगे क्या बनना चाहती हैं आप?
1: मैं डॉक्टर।
0: डॉक्टर बनना चाहती हैं, बहुत अच्छे। चलिए शुक्रिया आपने फ़ोन किया, और कुछ तो नहीं कहना चाहती?
1: नहीं, बस
0: अच्छा शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, और हम अब सुनवा रहे हैं ये गीत।
1: जी।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम अर्निश है।
0: अर्निश?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप अर्निश?
1: मैं अंसोली से बोल रहा हूँ, कांगड़ा।
0: अंसोली से?
1: हाँ
0: है ना। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: सेवेंथ।
0: सेवेंथ में? अच्छा
1: जी।
0: अच्छा तो सेवेंथ में है, तो कौन से आपके सब्जेक्ट जो हैं आपको सबसे अच्छे लगते हैं? फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना कोई?
1: मैथ लगता है और
0: हाँ,
1: फिजिक्स और केमिस्ट्री लगता है।
0: फिजिक्स और केमिस्ट्री भी
1: कितने
0: बहुत अच्छे। और कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप?
1: घंटे? आधा घंटा कर लेता हूँ।
0: बस, मतलब घर आके आधा घंटा? तो फिर आधे घंटे में तो वही काम होता होगा जो टीचर ने दिया है, होमवर्क, कुछ रिटर्न होगा। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं
1: हाँ
0: पढ़ते आप?
1: बिल्कुल, वो मैं पेपर के टाइम ही पढ़ता हूँ।
0: अच्छा, ठीक। और कुछ बच्चे होते हैं ना उसी दिन पढ़ते हैं। फिर रात को कितने बजे तक पढ़ते हैं उस दिन, क्योंकि सुबह पेपर है?
1: ग्यारह
0: अच्छा,
1: बारह
0: 11-12 बजे तक। ठीक। अच्छा मुझे बताइए, क्या पूछूं आपसे, क्वेश्चन पूछूं कोई?
1: पूछ। हाँ पूछ लो।
0: अच्छा, वे कौन है जो बिना पैरों के चलता है और बिना पंखों के उड़ता है? जल्दी से बताना है, पर अब मैं टाइम नहीं दूंगी।
1: मेरे
0: वे
1: को
0: कौन
1: नहीं
0: है
1: पता।
0: जो बिना पैरों के चलता है और बिना पंखों के उड़ता है?
1: हवा।
0: हवा? नहीं,
1: मुझे नहीं आता।
0: नहीं आता। अच्छा, वो होता है हमारा समय, और हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए, खास करके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय जो है वो बहुत ही कीमती चीज़ है ना,
1: हाँ जी।
0: उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी, पढ़ाई करनी, क्योंकि आप अभी आप सेवन्थ में हो ना, तो आपकी ये जो उम्र है खूब मेहनत करने की है ना।
1: हाँ जी।
0: ठीक है। अच्छा, और बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: नहीं,
0: नहीं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं?
1: सात।
0: अच्छा, और सूरज किस दिशा से उगता है?
1: है
0: नहीं पता? साथ में कौन बैठा है?
1: कोई भी नहीं।
0: कोई भी नहीं है? कोई तो फुसफुसा रहा है साथ में। दीदी बैठी है क्या?
1: ईस्ट
0: अच्छा हाँ, ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं?
1: ये नहीं पता।
0: ये नहीं पता? चलिए, ये तो भाग गए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से जवाब दिए आपने। शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: शायर।
1: अच्छा चलिए, किसी और कार्यक्रम में हम आपको ये गीत जरूर सुनाएंगे। रेडियो सुनते हैं ना?
0: जी जी मैम,
1: कब से कब तक?
0: बहुत दिनों से याद आता है तभी सुन लेते हैं।
1: अच्छा कभी कभी सुनते हैं, ठीक है। चलिए ये कार्यक्रम जो है वो हमारे युवा साथियों के लिए है, ठीक है। हाँ शुक्रिया, फिर भी आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, हेलो जीनियस, कौन है? नाम
1: मैम
0: बताइए।
1: सिमरन।
0: सिमरन बोल रही हैं। सिमरन,
1: हाँ
0: कैसी हैं
1: जी
0: आप?
1: मैम, ठीक हूँ, आप बताइए।
0: हाँ, हम भी अच्छे हैं। और हमारे जो बाकी के श्रोता हैं, मतलब जो बाकी के हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए बताइए कि आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं।
1: मैं ज्वाली कांगड़ा
0: अच्छा, और
1: और कॉलेज जाती हूँ।
0: कॉलेज जाती हैं? ठीक।
1: हाँ जी,
0: अच्छा, तो आपको पता है आज हम क्या पूछ रहे हैं?
1: हाँ पहेलियाँ पूछ रहे हैं।
0: हाँ, पहेलियाँ भी पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे।
1: हाँ जी,
0: ठीक है।
1: हाँ जी मैम।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद तो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ दिखा देती है?
1: आईना
0: आईना तो हमें दिखाई देता है ना सामने।
1: नहीं, रुको मैम, सोचने दो। एक बार फिर से रिपीट करना।
0: रिपीट करूं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद तो दिखाई नहीं देती है लेकिन सब कुछ
1: हाँ
0: दिखा
1: जी,
0: देती है? चलिए एक को और पूछती हूँ, आसान सी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है?
1: पानी पीते ही मर जाती है। प्यास,
0: क्या कह रहे हो?
1: प्यास।
0: हाँ, प्यास भी हो सकती है।
1: हाँ जी,
0: ठीक, प्यास भी हो सकती है कि पानी पीते ही हमारी प्यास बुझ जाती है। और दूसरा इसका आंसर होगा आग,
1: आग।
0: है ना? आग
1: हाँ
0: में
1: जी, हाँ
0: पानी
1: जी,
0: डालो तो वो बुझ जाती है। ठीक।
1: हाँ जी।
0: अच्छा, आप कॉलेज जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
1: प्रशांत महासागर। हाँ
0: बिल्कुल ठीक।
1: जी,
0: ठीक,
1: और
0: चलिए
1: बताइए मैम। ठीक
0: और भी
1: हो,
0: पूछनी है। चलिए, बाकियों के लिए रख लेते हैं कुछ,
1: ठीक
0: है ना?
1: है मैम।
0: हाँ, आप कुछ और कहना चाहती हैं?
1: बस मैंने
0: बहुत
1: यही
0: अच्छे,
1: कहा
0: आपने
1: था मैम।
0: सभी जवाब जो हैं बहुत अच्छे से दिए। शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: हाँ जी मैम, ठीक
0: चलिए
1: है।
0: तो युवा साथियों, सुनते हैं कुछ संदेश और उसके बाद सुनते हैं एक गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
4: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
3: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
3: वो कैसे?
4: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
3: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
4: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
3: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
4: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600

0: करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी,
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
0: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3: हेलो,
4: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
4: जी मैं बबीता बोल रही हूँ, कांगड़ा से।
3: कांगड़ा से बबीता, क्या करती हैं आप?
4: जी मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
3: अच्छा, और आपका एम क्या है, क्या बनना चाहती हैं आगे चल के?
4: मैम मैडम बनना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ।
3: टीचर बनना चाहती है, छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं?
4: हाँ जी।
3: अच्छा ठीक, तो ऐसा क्यों कि बिल्कुल छोटे बच्चे, मतलब प्राइमरी क्लास?
4: हाँ जैसे पहली क्लास दूसरी क्लास के बच्चे।
3: अच्छा, तो फिर जेवीटी करेंगी?
4: हाँ जी।
3: अच्छा ठीक, ऐसा क्यों आपका मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों शौक है आपको छोटे ही बच्चों को पढ़ाना?
4: मैम इसलिए कि मतलब छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, उनको बैठाना पढ़ाना अच्छा लगता मेरे को।
3: ठीक ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बता सकती हैं?
4: सॉरी मैम।
3: अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आपसे पूछते हैं हम एक पहेली। रेडियो कब से सुन रही हैं? आज शुरू से सुन रही है?
4: हाँ मैम, मेरे डैडी सुनते थे, सभी से सुने, बचपन से सुन रही हूँ।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा ये बताइए कि वे क्या है कि जो महीने में एक बार आता है और 24 घंटे पूरे होने पे वो चला जाता है? हर महीने में एक बार आता है, मतलब वैसे तो रोज ही आता है, लेकिन एक टाइप का, एक ही महीने में एक बार आता है और फिर 24 घंटे जब पूरे हो जाते हैं तो वो चला जाता है।
4: समय
3: तो हर वक्त रहता ही है ना, और वो 24 घंटे में नहीं, वो तो हर पल निकल रहा है ना। समय जो दो, मतलब हर सेकंड में, हर क्षण में समय जो अभी है वो एक सेकंड में फिर निकल जाएगा। चलिए मैं बता देती हूँ।
4: हाँ जी मैम।
3: वो तारीख होती है कि 24 घंटे के बाद दूसरी तारीख आ जाती है, मतलब बदल जाती है। महीने में एक बार आती है एक ही तारीख, आज जैसे 4 जुलाई है तो इस महीने में 4 दोबारा नहीं आएगी, और जब 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, है ना, रात के 12 बजे के बाद शुरू हो गया था और अब रात को 12 बजे फिर बदल जाएगा। ठीक है,
4: ठीक है मैम।
3: तो अच्छा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है?
4: कमल।
3: हाँ, पीछे से कौन बता रहा है? मम्मा?
4: नहीं, मेरी छोटी बहन बैठी है।
3: बहन बैठी है, अच्छा बहन बता रही है। वो क्या करती है?
4: हाँ, वो भी पढ़ती है।
3: कौन सी क्लास में?
4: एट क्लास में। एट क्लास,
3: एट्थ में?
4: हाँ जी।
3: अच्छा तो वो आपको पीछे से बता रही है, क्या बात है।
4: नहीं मैम, मैंने बोला
3: था। अच्छा दोनों को पता
4: थी मेरे।
3: ठीक ठीक ठीक, चलिए अच्छी बात है, दोनों बहनें बता रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए शुक्रिया फोन करने के लिए।
4: ठीक है मैम,
3: बहुत अच्छा लगा।
4: फोन लगा था,
3: पहली बार लगा है, तो चलिए फिर और भी स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, और हमें भी बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया आपने फोन किया।
4: ठीक है मैम,
3: चलिए अब चलते चलते हम सब आप सभी के लिए सुनवाते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

सुरमई सांझ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। किसान व बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर। किसानवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 7:10 पर और विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:00। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 9:00। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम साहित्य भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10:00 रिले किया जाएगा।

ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम के 6 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाक

0: से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि 2027 में भाजपा की सीटें मौजूदा संख्या से कम होंगी। दिल्ली से शिमला लौटने पर आज उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि लोकतंत्र में मिशन रिपीट नहीं होता, बल्कि जनता के निर्णय से सरकार बनती है। उन्होंने शिमला में हो रही कांग्रेस कमेटी की बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर रूपरेखा तैयार की है।
2: नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नई कार्यकारिणी बनाई है और कार्यकारिणी का पहला प्रदेश का जनरल हाउस हुआ है, जिसमें सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सम्मानित मंत्रीगण को सब शामिल हो रहे हैं। ये बात साबित है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2027 में नहीं आएंगे और इनके विधायकों की संख्या भी अभी जो है उससे कम होगी।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद खाली है और उसे भरना जरूरी है, हालांकि इस पर फैसला पार्टी हाईकमान करेगा।
2: मंत्रिमंडल विस्तार होना है और मंत्रिमंडल विस्तार कब होना है ये तो हाई कमांड तय करता है, और एक मंत्रिमंडल का हमारा पद खाली है, उस पद को भरना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और 16-17 तारीख को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हमारी बैठक है। मेरा ये मानना है कि जो पोस्ट खाली है उसको भरा जाए।
1: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पर अपने संबोधन में कहा कि कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत सबसे पहले प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में हुई थी और बाद में उन्हें सरकारी कानूनों में शामिल किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बिल की सफलता को केवल कानून बनने से नहीं, बल्कि सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने की क्षमता से मापा जाना चाहिए। कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जिज्ञासा, संवैधानिक निष्ठा और जनहित के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ विधायी काम करने का आग्रह किया। बाद में उन्होंने समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार सड़कों नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है। आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण पर इस वित्त वर्ष में करीब 227 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि सोलन जिला में 15 करोड़ रुपए की लागत से करीब 70 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खस्ता हालत सोलन सुबाथू सड़क मार्ग की मुरम्मत के लिए करीब 23 करोड़ रुपए की DPR तैयार है और जल्द ही इसकी पहली किश्त जारी होगी।
3: सोलन सुबाथू बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि ये सुबाथू से लेकर आगे पूरा परवानू तक ये सड़क जोड़ती है, करीबन 65 किलोमीटर का है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बजट का प्रावधान इसके लिए होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए करीबन 23 करोड़ रुपए की DPR जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई है कि 23 करोड़ रुपए इसके लिए हम जल्द से जल्द जो है वो मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, शांडल साहब के सहयोग के साथ इसमें स्वीकृत करवाएंगे और इमीडिएटली इसका कार्य जो है अगले कुछ दिन के अंदर इसको हम शुरू करवाएंगे।
1: राज्य वन विभाग ने इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में 8000 हेक्टेयर भूमि पर करीब 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत करीब 4000 हेक्टेयर भूमि पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधे रोपे जाएंगे। वन बल प्रमुख डॉक्टर संजय सूद ने सभी वन मंडल अधिकारियों को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और राजीव गांधी ग्रीन अडॉप्शन योजना पर बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। कई स्थानों पर जहां भूस्खलन से प्रदेश की कई सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, वहीं वर्षा से 23 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य जारी है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आज सोलन और सिरमौर जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष अन्य जिलों में मॉनसून की सामान्य बारिश होगी। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मॉनसून के दौरान होने वाले नुकसान से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि भूस्खलन व सड़क बाधित होने की संभावना वाले क्षेत्रों में पहले से ही मशीनरी तैनात की जाएगी, ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो। इसके साथ ही ये समाचार

0: बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुरमई सांझ में फिल्म संगीत।

मुझे इस कदर शौक था तुझसे मिलने का, मुझे इस कदर शौक था तुमसे मिलने का, तेरा लहजा देखा

तो चलिए श्रोताओं, इनकी शाम मस्तानी है, डोर किसी की ओर लिए जाती है, लेकिन तब क्या करें जब कोई डालकर आदत बेपनाह मोहब्बत की, डालकर आदत बेपनाह मोहब्बत की। अब वो कहते हैं कि समझा करो, वक्त नहीं है, लेकिन दिल तो दिल है ना।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार।

तो श्रुतो, इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुरमई सांझ यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौज जांग राइंदियां।

तो किसान व बागवान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ नर्मदा शर्मा। तो सबसे पहले तो बता दें कि आज हम किन किन विषयों पर बात करेंगे, जानकारी आपको देंगे। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर आज हम बात करेंगे, साथ ही आज हम आपको सुनवाएंगे उन्नत किसान से की गई बातचीत। तो ये सभी जानकारियाँ देने से पहले आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक लोकगीत के साथ।

0: संदेश कुमार की आवाज़ में ये लोकगीत अभी हमने आपको सुनवाया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और ख़ास कर जो हमारे किसान व बागवान भाई बहन हैं, खेतों में अगर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी खेतों में पानी लगाया होगा, तो साथ में ये गीत सुन रहे होंगे तो उनको पसंद आया होगा ज़रूर, ये हमारी उम्मीद है। तो अब हम बढ़ते हैं जानकारी की तरफ, बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ये एक बहुत ही किफ़ायती दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें मात्र 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये तक का वित्तीय कवर मिलता है। इसमें योग्यता की बात करें तो 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति हो जिसका किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता हो, इस योजना से वो जुड़ सकते हैं। इसका वार्षिक प्रीमियम केवल 20 रुपये है, जो हर साल खाताधारक के बैंक खाते से ऑटो डेबिट हो जाता है। ये पॉलिसी 1 जून से 31 मई तक के लिए मान्यता होती है और हर साल इसे रिन्यू किया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए बीमा कवर राशि दी जाती है, और दुर्घटना में आंशिक स्थायी विकलांगता जैसे एक आंख या एक अंग का नुकसान होने पर 1 लाख की बीमा कवर राशि दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया, आप अपने नज़दीकी बैंक या डाकघर शाखा जहां आपका बचत खाता हो उसमें जाकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म भरकर इसे शुरू करवा सकते हैं। आप चाहें तो नेट बैंकिंग के माध्यम से भी इसे सक्रिय कर सकते हैं। कुछ और जानकारी इस बारे में हम आपको देंगे, एक ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं गीत और कुछ संदेश।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना

तो किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर। तो आपको बता दें कि दुर्घटना की स्थिति में नामांकित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति बैंक या बीमा कंपनी में दावा फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकता है। आवश्यक दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना रिपोर्ट, अस्पताल के कार्ड, जो रिकॉर्ड हैं, ये सब शामिल हो सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है वो ये है कि ये योजना केवल दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या विकलांगता को कवर करती है। सामान्य बीमारी या प्राकृतिक मृत्यु पर इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए एक और गीत अब हम आपको सुनवाते हैं।

तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मौजां ग्राइंदियां कार्यक्रम में। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बरसात शुरू हो गई है तो कुछ सावधानियां आपने ध्यान में रखनी है। उसमें पानी अपने घर के आसपास खड़ा नहीं होने दें, क्योंकि उसमें मच्छर और भी कीड़े पनप जाते हैं, तो जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक।

होते हैं। पीने का पानी जो है उसको वो एक तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऐसी जगह से पानी लें जहाँ साफ़ पानी आता हो, क्योंकि आजकल बरसातों में गंदा पानी भी कई बार हम कुएं या बावड़ियों का पानी भरते हैं तो उसमें वो मिक्स हो जाता है और सेहत के लिए जो कि हानिकारक होता है। और अगर ऐसा पानी आपको पीना ही पड़े तो फ़िल्टर का प्रयोग करें, और नहीं ऐसा हो सकता है तो फिर आप पानी को उबाल कर भी रख सकते हैं। और बच्चों का और बुज़ुर्गों का खासकर ध्यान रखें कि उनको पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी मिले। और घर में बर्तन में जब आप पानी रखते हैं पीने का पानी, तो बर्तन की भी अच्छे से सफाई करें, क्योंकि अगर आप 2 दिन तक उस पानी वाले बर्तन को अंदर से अच्छी तरह साफ़ नहीं करेंगे तो उसमें भी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि उसमें गंदगी जो है वो इकट्ठी होने शुरू हो जाती है। और हमेशा पानी को ढक कर रखें, पीने का पानी खास करके, ताकि मच्छर या कीड़े आपके घर में या पानी में नहीं पनप सकें। और जो आसपास की जगह ऐसे है कि कई बार गड्ढे होते हैं तो वहाँ बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, या आजकल वैसे ही बहुत सारा पानी होता है तो वो बारिश का पानी भी इकट्ठा हो सकता है, तो उसका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि मच्छर जो हैं वो भी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं। तो घर में जैसे आजकल क्या होता है कि बरसात के मौसम में हरियाली होती है सब तरफ, घर के आसपास भी जो हमने पौधे लगाए होते हैं या झाड़ियाँ होती हैं उनको वो ज़्यादा फैलने लग जाती हैं, तो उनकी वजह से घर में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, मकड़ियाँ जो हैं वो जाले बना लेती हैं। तो उसका वो ऐसा ना होने दें, सफाई रखें, मतलब अच्छे से जैसे सुबह झाड़ू लगाती हैं घर की हमारी महिलाएं जो हैं वो, तो कोने हैं छत है तो उसमें अच्छी तरह साफ़ सफाई करें, घर में कुछ सामान रखा है तो उनके पीछे भी अच्छी तरह से सफाई करें ताकि जाले ना बन सकें।

0: के समय हम देखते हैं कि हमारे दरवाज़ों के बाहर बहुत सारा मच्छर घूम रहा होता है, तो जाली के दरवाज़े जो हैं वो शाम के समय में थोड़ा ध्यान से खोलें कि मच्छर अंदर ना जाएं। या फिर एक और भी बात हो सकती है कि हवन, जैसे आजकल मिल जाता है हवन, या फिर उपलों का प्रयोग आप कर सकते हैं, वो जला के शाम के समय थोड़ी देर के लिए अपने कमरों में थोड़ा थोड़ा घुमा सकते हैं कि उसके धुएं की स्मेल से मच्छर जो हैं वो बाहर निकल जाएं। और वैसे भी वो अपने वातावरण के लिए अच्छा होता है, शुद्ध करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अब हम आपको सुनवाते हैं एक उन्नत किसान बुद्धि सिंह से की गई बातचीत।
1: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच आहां दा प्रयास रहंदा कि रोज हर दिन नोइया ते नोइया जानकारियां आहां तोहां तक पहुंचाइए। चाहे वो आहां दे कृषि विज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारियां हो या फिर आहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों कन्ने कीती गई गलबात हो, उसी कड़ी विच अज मिंजो मौका मिला जुड़ा करदे हन मेरे कन्ने एक उन्नत किसान, करदे हन इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
2: राम राम जी।
1: जी तोहां दा नां जी?
2: बुद्धि सिंह।
1: कन्ने ग्राएं दा नां?
2: एक पनेरखड़।
1: पनियारखंड जमानाबाद। कन्ने ब्लॉक तो हादा?
2: कांगड़ा जी।
1: जी बुद्धि सिंह जी, ता वहां खेती बाड़ी करते हैं ना?
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: जी किन्नी की जमीन है तो हवाल?
2: सारी जमीन है 2 कमार की।
1: अच्छा, यानी कि कनाल कितनी हुई है? ता
2: बिजे मने कनाल हुंदी
1: तक ए सारी खेती करने काबिल है?
2: खेती करने काबिल है सारे।
1: अच्छा, क्या क्या बांधे कमांदे?
2: बांधे धान, बांधे गाय, घाओ बांधे।
1: हाँ जी हाँ। की सब्जी वगैरह?
2: सब्जी लगांदा मैं। सब्जी हां लगांदा
1: जी हां। इब्बे कदी फसल ताना दी?
2: फसल खड़ी है सारे।
1: अच्छा,
2: बड़ी फसल।
1: कौन बी लगांदे ताना दा?
2: ए गुलाबो 834।
1: अच्छा,
2: एक दो दाने हो रहे।
1: हाँ जी, देखा वे एक दो किस्म अगर हाँ लगाई ना, कई बार क्या होता कि एक आधी किस्म कोई कुछ बारी पैदावार घट ही भी आती तो उतनी भरपाई है दूसरी किस्म हाँ जो करी जाती है ना। अच्छा, यानी कि बाहर तो लेंदे बीज है ना। तो जी इससे बाद गल करते हैं खाद दी, खादा क्या?
2: खाद देसी खाद बने सारे।
1: अच्छा, बाकी यूरिया वगैरह नहीं?
2: नहीं नहीं
1: बिल्कुल। यहाँ बोलते हैं कि बाकी गल भी है कि देखा आए दिन बीमारियां वादा कर दी
2: बहुत दिन पर दिन बीमार।
1: अगर एक ही घर देखा अगर 5 ते 6 मेंबर भी आंदे ना विच, मैं नहीं समझता कि कुसी कोई बीमारी नहीं होंगी है।
2: 90% बॉय निर्भर रहे दवाई पर।
1: हां जी,
2: 10% कोई होगा जो खरा होगा।
1: हां हां, तो देखा
2: 74 मा साल लगे
1: 18 किलोमीटर जाना, 18 ही होना,
2: 36 किलोमीटर तय पैदल होना, पैदल जाना।
1: हां देखा कि
2: कन्ने रंगा अंडणी।
1: हां, जो कि अगर वन विभाग की नौकरी तो बने ची अंडना पोना ना। जदों तोहां नौकरी करदे हे वन विभाग च, देखा भी जियां तोहां दस्या कि बने बने अंडना, देखो कि नौकरी बने दी है ना, तो तीन दिन भी जड़ा सा अग वगैरह लगती ही बना
2: चाहिए। रात रात अग बजाना जाना।
1: अच्छा, तदों भी लगती
2: है? तदों लगती है अग।
1: हां,
2: बड़े भारी हूं तब नौकरी करना आसान है।
1: हां जी,
2: पहले नौकरी बड़ी कठिन होती थी।
1: हां जी हां,
2: अफसर डड़ांदे थे।
1: हां जी,
2: दौड़ कर आए रहते थे।
1: हां जी
2: हां जी हां जी, 16 साल 4 महीने पक्की नौकरी है। अग लगती है जिस वेला, जिस वेला हां से अग बुझाने वास्ते गब्बे छेद पाना।
1: हां,
2: अंडे कंडे कर देने,
1: छेका करना है,
2: छेके कर दे।
1: अच्छा अच्छा जी, दूध अगर घरे का चाहिए भी अगर पूरा हो जाता ना, दिखा ही की करा अगर दिने दी 4 4 5 5 बारी चाह भी बना कर दी था, इतना प्योर दूध कुतु मिलना ना?
2: नहीं मिलना।
1: कना अपने घरे का दूध दही है, छा बनाई लिया, खोआ बनाई लिया, पनीर बनाई लिया, दही खाई लिया ना। कई बारी जी कोई खेती दे ऐसे कैंप लग दे, कोई ट्रेनिंग चल दी, तो हम भी कुछ सिखलाई वगैरह ले जी रिटायर होने के बाद?
2: नहीं,
1: यानी कि जड़ी तो खेती कर दे आए से अपने तजर्बे करने जड़ी
2: पीढ़ी
1: दर पीढ़ी है ना।
2: पहले देसी धान लगे,
1: हाँ,
2: तरह तरह के धान हो, तरह तरह के बीज हो, तरह तरह के माणु हो।
1: हाँ जी हाँ,
2: नहीं
1: हाँ जी हाँ, कहते क्या हूं तो खेती भी जड़ी सब बिल्कुल जिस यहाँ बोलते ने आधुनिक हुई हो।
2: और
1: हूं दिखा जी इतने सारे जी कोई दवाइया आई हैं, पहला जी तो निदाई करते हे,
2: और कोई कुछ बटाड़ करते हैं, हाँ तो बटाड़ करते हैं, निदाइया करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। एक एक पटिए हैं जो 6 6 7 7 दिन लग जाते घाय बीन दे।
1: हाँ जी हाँ,
2: फिर पारनिया देनी है, पारनिया रखी हुई।
1: हाँ जी,
2: बलदान पानी देंदे हे।
1: हाँ जी,
2: हूं तो ट्रैक्टर रखे, ट्रैक्टर नो बाद ही बस हो।
1: हाँ, तो हाँ पहला ना भी कितनी होनी खेती है ना, पहले दांत रखे है?
2: और मंजल दो दो जोड़ी है।
1: अच्छा,
2: और मैं दांत रखे,
1: दांत रखे जी। ये जमाना बदलोया था, दिया दिया ट्रैक्टर आई है ना,
2: टाइम टाइम।
1: अच्छा अच्छा,
2: मैं ट्रैक्टर ले बट्टा जा रहा था।
1: अच्छा,
2: ट्रैक्टर ले छोटी छोटी।
1: हाँ जी हाँ, पावर टिलर है।
2: फिर मुझे सब्सिडी मिली गई।
1: अच्छा, कितनी मिली ही?
2: हाँ जी, मिली 2500।
1: देखा ये भी बड़ा एक ये है कि थोड़ा बहुत अनुदान भी अगर मिली जा किसान जो है ना, पता होना चाहिए था कि कौन स्कीम चली है ना, कौन नहीं चली है ना।
2: हूँ अह गोभी लाते।
1: हाँ जी,
2: 250-300 बूटा लाना।
1: अच्छा,
2: गुड गुडाई करनी।
1: हाँ जी,
2: पाल सब लानी, बेची भी लेंदे।
1: अच्छा हाँ, तो देखा भाई तो हाँ जो था जी कांगड़ा बाजार नेड़े लगता होना ना, कहना हरी वारी सब्जी वो है तो घर द्वार ही बिकी
2: जाती है, घर द्वार ले जाते। हाँ जी, तो घर ले।

0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: जी, तो हाँ, जो इलाका है तो सिंचाई की है कर दे खेत
1: ये
0: की
1: कुल लाना सर,
0: खुद
1: ये
0: होगी
1: मोटोरे से कुल लाऊंगी ना,
0: पकियां ने कुल लाना है।
1: पक्कियां कुल लाना, पहले होनी ही कच्चियां, पहले
0: अच्छा
1: नहीं बड़ा हूं रखना, दिन रात का फर्क है। हाँ मोटोर होना ना,
0: हाँ जी,
1: कारण पानी इतना पुजी अंदर
0: अच्छा हूँ,
1: एकदम, हूं हटो पर टब ही नहीं रहे,
0: हाँ जी
1: हूं कुल्ला बनी है।
0: हाँ जी हाँ।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: कहाँ देखा, पानी दा खेती दा ये बड़ा जरूरी होता है, अगर
1: और
0: पानी है तो हाँ कुछ भी फसल उगा सकते हैं ना। ये कुल्ला दे कौन से दिख सुन कौन करता कुल्ला दी।
1: दुलापुर है से लग गए,
0: अच्छा
1: जमाना वाले लग गए,
0: हाँ जी
1: जमाना वाले साड़ा कुल ही एक।
0: हाँ जी,
1: फिर
0: गल करते हैं कि जड़ी तो हाँ तू खेती बाड़ी करते हैं ना, तो हाँ जरा इलाका है ये तू कोई फसल जो उजाड़ वगैरह तो नहीं है कुछ दी।
1: उजाड़ वार बांदर सूर
0: हाँ जी
1: गूंद गाई ये
0: अच्छा
1: बढ़िया, गूंद गाई बड़ी मजबूत,
0: अच्छा
1: ये जंगली तो नहीं पार वारे टप्पी होनी है, ये पेठी सारे इससे सूर रहते, इससे
0: अच्छा
1: परला पर है मांझी दरिया पौंदा,
0: हाँ जी।
1: इस पास बड़े बड़े सूर बहुत
0: जी तो
1: बड़ा।
0: हाँ, इस अपनी जमीन में जी तार बंदी नहीं की, कोई बाड़ बंदी वगैरह कुछ।
1: और जनाब करते तन लोग किट्ठे होंगे तन, कोई
0: हाँ
1: बोलता कोई चुआनी वाला कोई ठाणी वाला है,
0: हाँ थोड़ी ए बड़ी भारी जड़ी समस्या दिखा भी,
1: समस्या ही
0: जमीन
1: है।
0: जड़ी किठिया ना
1: हाँ
0: चार पटियां कुछ किया ना छे कुछ की नहीं ना,
1: कुछ
0: तो
1: की नहीं,
0: सारे अगर अगर इकट्ठे
1: सारे
0: हो।
1: सारे लगान ना तो हो सकती सब, क्या जे जेड़ा बामा कर दे सही तो नहीं करना पौना,
0: हाँ जी
1: सही तो करना ही पौना, तो नहीं
0: जी
1: संभालना तो पौनी बड़ी तिया करन,
0: हाँ
1: हाँ तो यही
0: जी
1: सलाह देंदे भाई
0: हाँ जी।
1: तेने
0: आप ये है कि अपनी जमीन का जो है खाली मत छड़ा ना।
1: मत खाली मत छड़ा,
0: हाँ जी
1: नाच गा
0: हाँ जी
1: कि आने वाला टाइम फाके मर गए,
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी हाँ,
1: नहीं
0: क्योंकि महंगाइयां पता कर
1: महंगाइया
0: दिया।
1: दिन पर दिन बढ़ाइया, घर आ जा रहे जनाब, घर आ जा रहे, घर
0: हाँ
1: आ जा रहे।
0: तो कुल मिलाएगी ये हाँ बोल सकते हैं ना कि मेहनत करा
1: हाँ
0: कने मेहनत फल जड़ा सा हमेशा जड़ा सा
1: मिठा
0: मिठा
1: होगा,
0: होता है
1: बस
0: ना।
1: बस बस
0: जी
1: यही
0: बुद्ध सिंह जी, तो हाँ अपने अनुभव खेतीबाड़ी दे अहाँ कन्ने साझा किते, अपना कीमती समय तो हाँ अहाँ जो दिता तो हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी ये जानकारी सुनी, और इसके साथ ही आज का मौजंग रहेंदी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता हैं जितेंद्र पाल सिंह। तो अब अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजंग रहेंदियां,
3: इंडिया और
2: आकाशवाणी
3: मेक इन इंडिया
2: धर्मशाला
3: के
2: केंद्र।
3: मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े, और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
3: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है

उन्होंने कहा कि वृद्धि, रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPF के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे ही किसान बागवान भाइयों भैनों का अह अपने इस कार्यक्रम च स्वागत करते हैं। कने अज दे कार्यक्रम च मेरा साथ देने ताई टियाले पर मंजू कने सन्नो ताई। तो सन्नो ताई कमाई बताई आई कि आई?
1: मैं कमाई बताई आई ताई ता पुजी टियाले पर
0: ताई ओ ताई मैं देखा हा भाई ताई साड़ी इस उमरा भी जेड़ा सह बेला नहीं बहंदी जरा नहीं बहंदी बेल लगी रहंदी बस जालू देखा पट्टियां ओ कताए आए जाए ताई तो बोले पट्टियां ते कताए चलियो पट्टियां ओ
1: मैं बोलदी जंग जानू चली रहन ना
0: हां
1: ता शरीर भी खरा रहंदा कने बेले कुसे भी खरे नहीं लगदे
0: ए ता पक्की गल गलाई तू हां
1: बेले दी कदर है नहीं आजकल जे घर है माड़ा मोटा करी दिंदी ना मैं गवाड़ा पछवाड़ा कुछ ना कुछ कमाईंदी ता सारे दे चेहरे भी खरे रहंदे ना
0: हाँ।
1: कर मेरा शरीर तो खरा रहंदा ही रहंदा ते मैं बोलदी बेलने बेह के भी अपियो रोग कई लाने
0: बिल्कुल जी बिल्कुल सेहतां खरियां तो सब कुछ खरा है ना
1: हां जे एक बारी रोग लगी आ ना तो फिर से मानू कुती पहायदा नहीं रहंदा कने सेवा भी फिर से कुणी करनी जे आका पांगे कड़कड़ियां ता इना भी करे दा कमाना की आ बखे बैणा
0: हां पक्की गल गलाई ता अपना ध्यान सारे आपू ही रखना पोणा है ना
1: बिल्कुल ध्यान हां ही रखना अपना भी अपने डंगर पशुआं दा भी कजो की आज जेडी अपने श्रोतियां ने अपने किसानां ने हां गल सांझी करनी है से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
0: जी
1: बिल्कुल दिखा अहा दे किसान खेती बाड़ी दा काम तो कर दे न सोगी सोगी से पशु पालन दा काम भी कर दे तीना डंगर पशु भी करे रखे न ता तीना दा जेड़ा ध्यान है तीनों क्या दुख बीमारी रोग क्या लगा है क्या नहीं लगा है से भी अहा दे किसान जो ही पता होना चाहिए दा।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक गलाया तो हां दिखा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम दी जालू अहा गल कर दे ताई है ना
1: बिल्कुल
0: ता इस दा मुख्य उद्देश्य ये है कि जेड़े अहा दे मवेशी होंदे ना चाहे सै मैं ही

0: या भेड बकरियां हो या सूर हो ये है ना,
1: कोई भी। हाँ
0: कोई
1: जी
0: भी पशु हो या तिस जड़ा सा खुर पका कने मुंह पका रोग जड़ा होंदा है ना, कने जिया जड़िया बीमारियां होंदिया ही ना उन्हें जड़े ते जड़ा सा समाप्त करना इदा जड़ा सा मुख्य उद्देश्य है ना।
1: जी बिल्कुल, कने तुहा ठीक गलाया। जड़ी ब्रुसेलोसिस जड़ी है ये भी बड़ी खतरनाक पशुओं जो लगने
0: होने
1: वाली
0: वाली जड़ी
1: बीमारी
0: से
1: है,
0: बीमारी। हाँ जी हाँ
1: ता
0: जी
1: इन्हां दा नियंत्रण समय पर हो है बड़ी जरूरत है चीजा दी, का जो कि एक बार ये जालू डंगर पशु है जो रोग लगी आंदा, जे खुर पक्का मुंह पक्का या फिर कोई और भी रोग लगी आ, तो सह अहां दे डंगर पशु है पूरी तरह से कमजोर करिंदा, कने खास करी जेडे दुधारू होंदे ना तिन्हां पर ज्यादा फर्क पौंदा, सह दुधे सुकी आंदे।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, ताई तो हाँ ठीक गलाया। कने इदी ताई जड़ा सा टीकाकरण जड़ा सा सरकार दे पाहे ते जड़ा सा होंदा है ना,
1: जी
0: ता अहां दे किसानां जड़ा सा पशु पालकां अपने पशुओं दा टीकाकरण जड़ा सा करवाना चाहिए इदे अंतर्गत।
1: जी कने ये जड़ा कार्यक्रम है इस दिया कुछ मुख्य विशेषता भी सरकार तय कीतियां ने, इस कार्यक्रम दा लक्ष्य रखिया भी टीकाकरण दे माध्यम ते 2025 जड़ा हुई है पिछले साल
0: जी
1: 30 तक खुरपका मुंह पका रोग जो नियंत्रित करना, कने 2030 तक पूरी तरह इस रोग जो खत्म
0: मतलब
1: करना,
0: जड़े ते मकाई है ना,
1: मकाई
0: है
1: देना,
0: ना।
1: मतलब रहे जरा न रहे, ताकि हाँ डंगर पशु स्वस्थ रहन, कने किसान जो भी अच्छा फायदा हुआ है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक
1: कने
0: गला
1: इस
0: दे।
1: दे तहत टीकाकरण की गल करिए, तो इस विच गाय मई भेड़ बकरियां कने सूर सहित जड़े 500 मिलियन ते अधिक पशुओं जो हर 6 महीने च मुफ्त FMD का टीका लगाया जाता, कने इस दे सौगी सौगी 4 ते 8 महीने की जड़ियां मादा बछड़ियां होंदियां तिना जो ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया जाता।
0: बिल्कुल जी, कने इदी कन्ने ही ताई पशुओं दी जड़ा सा टैगिंग भी होंदी है ना
1: बिल्कुल।
0: इस
1: हाँ जी
0: कार्यक्रम च, जड़ा सा पशुओं दे कन्ने पर एक पहचान टैग जड़ा सा लगाया जांदा, कने उस दा जड़ा सा डिजिटल डाटाबेस भी जड़ा सा तैयार कितिया जांदा है ना।
1: जेडे कन्ना च जलाए होंदे थे ना इस क्लिप दे,
0: हाँ
1: बोल
0: बस
1: दे
0: है
1: इस विच सारी जानकारी रहंदी,
0: सारी जानकारी। हाँ जी हाँ जी
1: सह इस विच फायदा भी होंदा, कन्ने जानकारी होने दे बावजूद क्या होंदा कि जालू सह डंगरा जो लोग कवारे छड़ींदे ना, ते तिथु भी ते चीजा दा समाधान हो जांदा।
0: स्कैन करके पता लगी आंदा भाई कुदा है पशु है ना।
1: हाँ तो जेडे जेदे कम्मा करदे मैं बोलदी सभी थोड़े सुधरी जान।
0: इस जानकारी ते बाद फिर चलदे न ताई रौनक मेले पाहें, कने सुनांदे न अपने श्रोताएं ये प्यारा दिया लोक गीत।
1: जी।

0: जी किसान साथियों तुहा सुना दे मिठा दिया प्यारा दिया लोक गीत कने सारे जो बांका लगा होना हाँ ये उम्मीद करनी है तो लोग बाऊ इस ते बाद क्या जानकारी है हाँ दे श्रोते वास्ती
1: दिखा हाँ अपने इस कार्यक्रम च एक भेंट वार्ता दा अंक जिहड़ा सा अपने किसान साथियों ताई लेके आउंदे न ता देरी नहीं करनी कने सुनांदे न अपने किसान साथियों ये भेंट वार्ता दा अंक
0: जी।
2: हमारे किसान भाई जानते हैं कि समय समय पर उनकी जानकारी के लिए जो हम विशेषज्ञों से भेंट वार्ता करते रहते हैं उद्देश्य हमारा यही रहता है किसान भाइयों के अगर कोई किसान भाई नई फसल लगाता है कोई भी फसल लगाता है तो उसकी जो है उसको भरपाई जो है सही स्वरूप में हो, उसको अच्छी आमदनी मिले, उसको जो है पैदावार सही स्वरूप में मिले। तो आज हम फूलों की खेती बाड़ी के संबंध में बात करेंगे, उसमें जो है एस्ट्रोमेरिया की उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी कैसे की जा सकती है इस संबंध में बात करेंगे। तो इस संबंध में जानकारी देने हेतु आज हम संग हैं डॉक्टर भव्य भार्गव जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में कार्यरत हैं। डॉक्टर भव्य आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार सर।
2: सबसे पहले हमारे सुनने वालों को बताइए कि जब भी हम खेती बाड़ी करते हैं जगह का चुनाव खेत का चुनाव जो है बहुत अनिवार्य होता है, तो एस्ट्रोमेरिया के लिए कौन सी किस्म की जमीन जो है सही स्वरूप में रहती है, उसका पीएच मान क्या होना चाहिए?
3: एल्स्ट्रोमेरिया जैसे मैं बताऊं आपको, इसको पेरुवियन लिली भी बोलते हैं और ये पॉलीहाउस में लगने वाली एक कर्तित पुष्प की फसल है। और जैसे आप कर्तित अगर पुष्प पॉलीहाउस में लगाते हैं तो मैं पहले जलवायु के बारे में बताता हूं। जैसे हमारे ठंडे प्रदेश हैं, जैसे हमारा धर्मशाला है, पालमपुर है और मंडी के इलाके हैं, तो जो कि 1400 मीटर से की हाइट के ऊपर हैं, तो जहां पे अच्छा प्रकाश है, जहां अच्छी लाइट आती है और जहां पे ठंड रहती है, जैसे 24-25 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो वहां पे इसकी खेती बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कि अगर मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी जो हम सैंडी सॉइल जिसको बोलते हैं, तो वो उस मिट्टी के लिए पर्याप्त है। और ये कंदीय फसल है तो इसके जो राइजोम्स होते हैं जो उसके तरीके से इसको राइजोम्स की तरह इसको लगाते हैं और ये साल में तकरीबन दो फ्लावरिंग करती है ये पुष्प कंदीय फसल और आपको दोबारा लगाना नहीं पड़ता, एक पेरिनियल क्रॉप है
2: जी। तो इसके लिए मृदा पीएच मान क्या होना,
3: पीएच मान तकरीबन 6.5 होना चाहिए
2: जी।
3: तो अगर इसके ऊपर नीचे अगर पीएच मान है तो किसान भाई अपने हमारे पीएच मान को ठीक भी कर सकते हैं जिप्सम और को डाल के।
2: तो ये बताइए कि इनकी जो किस्में हैं एस्ट्रोमेरिया की कौन कौन सी हैं जिनकी?
3: एस्ट्रोमेरिया में 3 से 4 किस्में आती हैं, इसमें जैसे रोजिटा है पिंक में आती है, अलादीन है ऑरेंज में आती है और 3-4 और कलर्स हैं इसमें। तो ये हमारे पहाड़ों के लिए, हमारे जो

0: 1200 मीटर की हाइट पे हैं, तो उनमें ये किस्में अच्छी चलती हैं। कुछ इसमें पॉट वैरायटीज भी आती हैं जो पॉट के रूप में हम दे सकते हैं,
1: यानी कि गमलों में लगा सकते
0: गमलों में
1: हैं।
0: लगा सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा व्यवसाय है। और इसका जो पुष्प की जो वाज लाइफ है वो भी अच्छी है, तकरीबन हम देखते हैं तो तकरीबन 10 से 12 दिन की इसकी वाज लाइफ रहती
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये जो किस्में लगानी होती हैं, को किस किस मौसम में लगा सकते हैं हम?
0: है। हाँ, इसको लगाने का मौसम है तकरीबन सितंबर अक्टूबर में, हम इसको बोलते हैं। वैसे पूरे वर्ष लगा सकते हैं पर बेस्ट टाइम सितंबर अक्टूबर है, जब इसके आपको राइजोम्स मिल जाएं या पौधे मिल जाएं आपको। तो IGBT ये जो हमारा संस्थान है, हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, इसके पौधों को भी हम किसानों को देते हैं।
1: जी, उसके लिए कोई मांग पत्र भरना होता है?
0: मांग पत्र आप हमारे director@IGBT.res.in पे हमें मेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं director@IGBT के नाम पे। तो किसी भी किसान बंधु को अगर जलवायु का अनुरूप उनको लगता है ये क्रॉप हम लगा सकते हैं तो हम बेशक उनको हेल्प करेंगे इसमें।
1: जी, अक्सर हम कहते हैं अपने किसान भाइयों की कि अगर कोई भी खेती बाड़ी करनी है, किसी भी स्वरूप में करनी है, नई खेती बाड़ी करनी है, तो उसके लिए जो है प्रशिक्षण है जरूरी होता है। तो प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि फूलों की खेती
0: जी
1: बाड़ी के
0: जी
1: संबंध में?
0: हम समय समय पर अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करते रहते हैं, जैसे हम बागवानी विभाग के साथ भी करते हैं, और साथ में हमारा एक मिशन चल रहा है CSR फ्लोरिकल्चर मिशन, इसके तहत भी हम टाइम टू टाइम काफ़ी ट्रेनिंग्स करते हैं। अभी 2 महीने की ट्रेनिंग है जिसमें हम एक सर्टिफिकेट स्किल डेवलपमेंट का भी देते हैं, तो इसमें हम पूरी प्रशिक्षण देते हैं कि एक क्रॉप में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं लगाने से उसको काटने तक, उसको मार्केटिंग तक, तो उसमें सारी भी हम इस कोर्स में हम कवर करते हैं।
1: जी, तो ये बताइए कि हमने जो पुष्पकंद लगाने हैं उनका समय क्या होगा, कब लगाने चाहिए और किस स्वरूप में लगाने चाहिए और किस प्रकार से लगाने चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि इसको जो पॉली हाउस में इस पर लगाया जा सकता है।
0: जैसे मैं बात करूं कि जैसे हम इनको बताया कि पॉली हाउस में लगाते हैं, तो 1 मीटर चौड़ी हम क्यारियां बनाते हैं और लंबाई पॉली हाउस के अनुसार बना देते हैं। मैं लगाने की विधि है कि आपको एक लाइन बनानी पड़ती है, थोड़ी
1: जी,
0: पांच
1: पंक्ति,
0: सेंटी
1: जी।
0: पंक्ति बनानी पड़ती है, गहरी थोड़ी सी डालनी पड़ती है, उसमें इन कंदों को हम डालते हैं। तो 1 वर्ग मीटर में तकरीबन हम 20 कंद डालते हैं इसके, तो अनुसार उसके अनुसार हम तकरीबन बोलते हैं कि 500 वर्ग मीटर में आप देखेंगे तो 1000 के आसपास पौधे लग जाते हैं।
1: जी, तो कंध से कंध की दूरी क्या होगी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या
0: हाँ,
1: होती
0: कंध
1: है?
0: से कंध की दूरी आप देख लीजिए कि तकरीबन हम 10 सेंटीमीटर रखते हैं, और पंक्ति से पंक्ति तकरीबन हमारी 15 सेंटीमीटर के आसपास रहती है।
1: इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो भी डालने होते हैं, खादें या रसायन जो है?
0: हाँ, जैसे मैंने इसको बताया कि कंदीय फसल है, इसमें अपने आप स्टोरेज ऑर्गेन्स इनके होते हैं, तो इसमें ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं है। बट साल में 2 बार हम बोलते हैं जब फ्लावरिंग ओवर हो जाती है पौधे की, तो आप गोबर की खाद में 13045 जो खाद आती है हमारी, 100 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हम इसको मिक्स करके हम डलवाते हैं।
1: एक बात रहेगी डॉक्टर साहब, इनकी बिजाई से पूर्व जो है किसी रसायन में भी इनको डुबोना होता था ताकि इनमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप ना हो?
0: जी, इसको लगाने से पहले हम जो डायथिन और बेबिस्टिन का घोल है उसको तैयार कर लेते हैं। बेबिस्टिन 1 ग्राम और डायथिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के इसका सॉल्यूशन बना के इसको 15 मिनट, हम 15 से 20 मिनट इसको डिप करके रखते हैं राइजोम्स को। उसके उपचार के बाद ही हम रिकमेंड करते हैं कि पौधे हम पॉलीहाउस में लगवाएं।
1: जी, तो उसके उपरांत जो है इसमें जो है जो जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटाश तत्व तो जो है उस किस किस मात्रा में डालने होते हैं?
0: लगाते हैं, सही जरूरत नहीं होती है क्योंकि कंदीय फसल है, अपने आप इसमें स्टोरेज कौन से होते हैं। 1 महीने बाद हम बोलते हैं कि 13045 की खाद 100 PPM या 100 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको प्रति वर्ग मीटर आपको डालना है। तो आप इसको पानी में घोल के भी डाल सकते हैं और पौधों के आसपास भी स्प्रिंकल कर सकते हैं।
1: कीड़े और बीमारियों से प्रकोप जो है बड़ा जरूरी हो जाता है, तो तापमान कैसा रहना चाहिए उसमें जो है? ज्यादा तापमान बढ़े तो किस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं और कम तापमान हो तो किस प्रकार की परेशानी हो सकती है?
0: जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये ठंडे मौसम की क्रॉप है, तो अगर हम साइड से अपने पॉलीहाउस के वेंट्स ओपन रखते हैं और जिससे साइड वेंटिलेशन होता रहता है, तो हमारा टेम्परेचर पॉलीहाउस में मेंटेन रहता है। तो किसान भाई इस बात का ध्यान दें, कभी भी जब ये क्रॉप लगी है तो आप अपने जो वेंट्स हैं साइड वेंट्स इसको बंद ना करें, और शाम को, सर्दियों में शाम को इसको बंद कर सकते हैं, सुबह इसको खोल सकते हैं, और गर्मियों के मौसम में इसको ओपन ही रखें क्योंकि ह्यूमिडिटी गर्मियों में ज़्यादा हो जाए, तो इसको ओपन ही रखें क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन हमारा रहना चाहिए। अगर यह नहीं रहता है तो अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, तो इसमें काफ़ी बीमार आ सकती हैं क्योंकि ये क्रॉप काफ़ी लेंकी हो जाती है, मीन्स बहुत लंबी हो जाएगी और तना बहुत पतला सा हो जाएगा, तो उसकी उपज के जो प्राइस है वो फार्मर को नहीं मिलती है।
1: जी, तो इसके अलावा जो है कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी होता है कुछ?
0: कीड़ा बीमारी इसमें कम आती है, जो कंद में लगती हैं बीमारियां, जैसे फाइटोफथोरा की बीमारी आ गई जो कंद के नोड पे ही लगती है, जैसे जमीन के साथ कंद पे ही लगती है, अन्यथा ऐसी कोई ज़्यादा इसमें बीमारी नहीं है।
1: जी, तो फसल तैयार होती है तो कितने दिनों में तैयार होती है?
0: जैसे मैंने बताया, अगर आप इसको सितंबर में लगाते हैं तो अगले वर्ष अप्रैल में ये फ्लावरिंग करता है, और साल में दो बार मैंने बताया था शुरू में, तो अप्रैल में फ्लावरिंग करके दोबारा ये क्रॉप अक्टूबर नवंबर में फ्लावर करती है।
1: जी, अंग्रेजी में कहा जाता है ट्यूबर और ट्यूबरलेट, तो

0: जो है, जो कंद जो है सही स्वरूप में विकसित होते हैं, वही जो सही स्वरूप में जो है फूल देते हैं।
1: हाँ जी, जैसे आपने बताया कि इसमें कण बल्ब ब्लैट भी बनते हैं, बट इसमें जैसे राइजोम क्रॉप है, तो 2 साल की क्रॉप के बाद हम बोलते हैं फार्मर को कि अपनी क्रॉप को दोबारा से निकाल के उसको डिवाइड करें, यानी रूट्स को डिवाइड करें। रूट्स के ऊपर स्टेम्स होती हैं। अगर आप कंद में, जड़ों में दो आपको लगते हैं प्लांट्स हैं, तो आप उसको काट के दो पौधे बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई भी हम कर लेते हैं।
0: जी, तो ऐसे में जो है अगर 100 बाई 100 का पॉली हाउस है तो उसमें जो है पैदावार कितनी हो सकती है, कितने जो है फूल निकल सकते हैं?
1: 100 स्क्वायर मीटर का अगर आप पॉली हाउस की बात करें, तो 2000 के आसपास हम इसमें पौधे लगाते हैं। एक पौधे से तकरीबन 5 स्टिक निकलती हैं, और साल में तकरीबन आप देखेंगे कि तो 10,000 आपकी स्टिक्स आ जाती हैं एक सीजन में, यानी कि 2 सीजन में 10-20 हज़ार के आसपास आएंगी। तो ये इसका जो फूल का रेट है दिल्ली गाजीपुर मंडी में, ये तकरीबन 7 रुपये के आसपास बिकता है।
0: एक
1: तो
0: स्पाइक जो
1: हाँ,
0: है,
1: एक स्पाइक है, तो अगर 20 हज़ार के आसपास से मैं कैलकुलेट करूँ तो 1,40,000 इसमें आपकी आमदनी हो सकती है। बट इसमें आप खर्चा पानी निकाल देंगे तो आप तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये इसमें कमा सकते हैं।
0: जी। तो डॉक्टर भव्य, आपने हमारे सुनने वालों को जो है एस्ट्रोमेरिया के उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी कैसे की जाए इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: लोका बाबू, इसके बाद फिर ही थोड़ी देर यहाँ गलबात अपने श्रोतिया ने करनी है। बरसात तो लगी हुई है, कने बरसाती यहाँ देगा किसान साग सब्जियां भी खूब लगा दे,
3: जी
2: तीदा भी थोड़ा तीन हो पता होना चाहिए।
3: बिल्कुल ताई, तुहां ठीक गला दे, कने दिखा खरीफ दी फसला दा बेला लग्या, कने इस वेले जड़ी यहां दी मुख्य फसला होंदी है, तिस च धान आई है तुहां दा, है ना
2: जी।
3: कने धान दी गल की जाए तो इस च भी जड़ा सा बरसात लगी हुई, तो कई बार क्या होंदा कि यहां दे खेतां च पानी जड़ा सा एकदम ही आई जांदा, है ना।
2: हां सह, कने कई बार कारण क्या होंगे, जल बरखा बधी आंदी ना तो कुल्ला कुल्ला टूटी आंदियां,
3: कने कई बार टप भी साड़ा रही जांदा, है ना,
2: रही आंदा, तो सह पानी ज्यादा मात्रा जलू फसला च पुजी आंगा ना, तो सभी मैं बोलती कई बार नुकसानदायक हो जाता।
3: बिल्कुल जी बिल्कुल, उस सर जड़ा एक बार मेरा भी टप खुला रही है, तो सारा उस सर जड़ा रेता राता जड़ा से पहली पट्टी तो पूरी खराब जड़ा से हुई हुई है ना। तो होंदियां तो छोटियां छोटियां गल्लां, पर इन्हें अगर अहां ध्यान च रखिए तो यहाँ की फसल जड़ा सा उत्पादन जड़ा सा अहां वधिया कने बांका ले सकते। जी हुण मक्का की गल करिए, मक्का च भी तुहां जड़ा सा चले पाने जरूरी होंगे, क्योंकि जल निकासी जी बड़ी जरूरी होंगी, क्योंकि नहीं तो थोड़ा छलैटा जड़ा सा ढही जाता, कने फसल जी खराब हो जाती है ना।
2: तो यही गल्ला अहाँ के किसानों को पता भी है ना, कि कने अहाँ भी दसते रहते थे ना इतों ते भी जलू बरसात ज़्यादा उतरी पौंदी ना, तो तुहां जरूर पट्टियां विच चक्कर लगा कने दिखियो भाई कोई बेवजह पानी आने का साधन तो नहीं है।
3: हाँ जी हाँ जी, ठीक गला दे, उं भी बरसाती ताई अहाँ इतों की बरखा ही जी सै बड़ी भारी बरखा होंगी है ना, तो अहें जड़ा सै अहाँ दे और भी घरे हुई नालू खोलू जड़े कुल्ला कुल्ला जड़ियाँ सै सवारी लैना चाहिए सारी, क्योंकि दिखा पानी का जल स्तर अगर थोड़े एक घरे साइड आई है तो कई बार घरें भी खतरा जड़ा सा हो जाता है ना।
2: बिल्कुल, कन्ने हर पास से नुकसान होंदा है, खेती बाड़ी का तो होंदा ही होंदा, कन्ने अहाँ दे अखे बखे भी सै कई बार नुकसान करी आंदा, पर जे अहाँ गल करा दे भी जी किसान हूँ गां साग सब्जियां बरसाती हिसाबे भी सोची होंदियां भी क्या क्या लगानियां सै लगा दे भी इन सब्जियां च दियां दिखा भिंडियां
3: लौकी होई
2: तोरियां होई करेला मिर्च होई बैंगन होई इना यो लगाई के भी हां दे किसान एक अच्छी आमदनी कमाई सकदे।
3: कने दालां च गल की जाए तो अरहर उड़द मूंग दी खेती जड़ा सा इस मौसम च बड़ी वधिया कने बाकी रहंदी है ना।
2: पर एक गल सही बार बार हां गला दे जलू मानसून च हां कोई खेती करदे ना तो इसते प्रति थोड़े दे कुछ नियम होंदे ते ना दा हां पालन करना पौंदा
3: जी। तो जिस पहला आंदा तुहांदा उन्नत जल निकास जी अहां गलाया कि खेत च पानी जमा नहीं होना देना तुहां, है ना, क्योंकि ज़्यादा पानी जड़ा सा अहां दी फसलां दी जड़ा है जड़ा सा सड़ाई दिंदा, कने खेत च जड़ा सा जल निकासी ताईं किसान साथी तुहां नालियां जिहड़ियां सै जरूर बनाणियां, है ना। कने उन्नत बीजां दा तुहां चयन करना है, क्योंकि अहां दे कृषि विज्ञान केंद्र करें अगर अहां दी प्रमाणिक दुकानां जिहड़ियां उत्थी ते तुहां जड़ा सा रोग प्रतिरोधी कने अधिक उपज देने वाले बीजा का ही जरा सह बाने तो, है ना,
2: ताकि घट से घट नुकसान हो।
3: कने दिखा बीए पर ही जरा फसल होंगी, एक होंगी बीए पर कने एक होंगी मिट्टी की सेहत पर, है ना। थोड़ी मिट्टी की सेहत खरी होगी कने तुह उन्नत किस्म का बीज लाया होगा तो उत्पादन तुह बड़ा वधिया कने बांका जरा मिलता है ना। कने ताई गल करिए कीट रोग नियंत्रण की, तो दिखा बरसाती के मौसम से जरा नमी के कारण कई बार अह इंदी फसल जरा सा फंगस या कीड़िया का हमला जरा सा तेज हो जाता है ना, तो जरूरत पौने पर तुह जरा सा जैव या फिर रसायनिक फफूंदनाशक दा जिहड़ा सा छिड़काव अपने खेतरां च फसलां च करी
2: करी सकदे। जी दिखा किसान साथियो, इयां तां तुहां आपू ही समझदार हन, तुहां पता वे बरसाती तुहां पट्टियां विच किन किन गल्लां दा ध्यान रखना पौंदा, पर फिर भी कई बारी हुंदा ध्यान नहीं रहिंदा, कने अज तुहां गल्ला जे भई टप से कई बारी
3: रही जांदी वजह। हां जी हां जी,
2: त्यां वजह ते की हुंदा बरखा कई बारी ढिल पौंदी, कने अहां दे किसान सोचदे भई अहां तां अपना कम करे आयो
3: करे आयो। हां जी
2: जल उसे पानी वधी पौंगा तां तुहां विचारियां

0: इलाय होने महंगे थे, महंगे खरीदी करी वैसे भी पिया गए मतलब तरी पौने।
1: तो मंजू ने तो क्या होया था कि मंजू ने होया कि मौसम, हाँ मंजू लगा था साफ था, मैं टप दिता रहना है ना।
0: अच्छा
1: कहने बरसाती दा मौसम तो है पता ही है, संजा दे या अंबर जड़ा सा नेर गवारी हुई, कहने जड़ा सा बरखा खूब हुई है, कहने फिर मैं टपे पट्टियां भी मेरिया दूर न थोड़ी दही खड्डा नाल
0: नहीं
1: बाहर
0: जाए
1: नहीं
0: होया।
1: जाए होया है ना।
0: हाँ
1: तो सह सारा उसर जड़ा सा पट्टिया च खड़ोई है, कहने दिखा पहली पट्टी तो मेरी जड़ा सा पूरी बर्बाद ही जड़ा सा हुई है ना।
0: तो दिखी लिया जेड़ा लोग के पाऊँ गलती की थी तुहां बिल्कुल नहीं करनी है, कने बरसाती खास करी जरूर तुहां पट्टियां विच जाई करी ये चीज़ां दिखनियां न वे कुथी ऐसी कोई गल तुहां लगा दी है तो तिहा दा समाधान तुहां सवेला ही करी होना।
1: जी तो इस बाद फिर ते ले चलते न अपने श्रोताओं जड़ा सा लोक जनकार पाए है ना, तो
0: बिल्कुल
1: सुनांदे ने प्यारा दिया लोक गीत।

0: जी तो यह मिठा मिठा लोक गीत भी अहां दे श्रोतियां तक पुज्जा दा है कने लोका बाऊ टियाले दी कड़ी बोला दी पे हुण तुहां दा जाने दा वेला भी आवदा है तो जांदे जांदे दसींदे कार्यक्रम प्रस्तुति जितेंद्र पाल सिंह हुण छन्नो ताई कने
1: लोके बाऊ जोदिया अनुमति
0: अच्छा जी जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: 57 कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा मौजूदा कांग्रेस सरकार का अब तक का कार्यकाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम, इस पहल से शिक्षा व्यवस्था की होगी ऑनलाइन निगरानी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़कों की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रही है सरकार। सोलन सुबाथू सड़क के सुधार के लिए 23 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार। हिमाचल में सर्पदंश से हो रही मृत्यु को रोकने के लिए तैयार

0: संगठन की आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हर मंच पर प्रदेश के जायज अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ी है, जिससे प्रदेश की आय के संसाधनों में वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और भाजपा की सीटें मौजूदा संख्या से कम होंगी। उन्होंने संगठन की बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर रूपरेखा तैयार की है।
1: नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नई कार्यकारिणी बनाई है और कार्यकारिणी का पहला प्रदेश का जनरल हाउस हुआ है, जिसमें सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सम्मानित मंत्रीगण को सब शामिल हो रहे हैं। ये बात साबित है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2027 में नहीं आएंगे और इनके विधायकों की संख्या भी अभी जो है उससे कम होगी।
0: इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की बैठकें नियमित रूप से सक्रियता से आयोजित की जानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए वित्तीय मामलों में भेदभाव करने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को हिमाचल को देश का अग्रणी प्राकृतिक खेती राज्य बनाने की दिशा में पूर्ण दक्षता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभाग को कृषि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग स्थापित करने को भी कहा। बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी व उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से वर्चुअल संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने चंबा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महला के प्रधानाचार्य से वर्चुअल माध्यम से सीधा संवाद किया। प्रधानाचार्य ने वर्चुअल माध्यम से विद्यालय की कक्षाओं का अवलोकन भी करवाया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पहल के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारी व सरकार सीधे विद्यालयों के शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद स्थापित कर सकेंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है। आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जिले में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण पर इस वित्त वर्ष में करीब 227 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि सोलन जिला में 15 करोड़ रुपए की लागत से करीब 70 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खस्ताहाल सोलन सुबाथु सड़क मार्ग की मुरम्मत के लिए करीब 23 करोड़ रुपए की DPR तैयार है और जल्द ही इसकी पहली किश्त जारी होगी।
2: सोलन सबाटू बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि ये सबाटू से लेकर आगे पूरा परवानों तक ये सड़क जोड़ती है, करीबन 65 किलोमीटर का है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बजट का प्रावधान इसके लिए होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए करीबन 23 करोड़ रुपए की DPR जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई है। ये 23 करोड़ रुपए इसके लिए हम जल्द से जल्द जो है वो मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, शांडल साहब के सहयोग के साथ इसमें स्वीकृत करवाएंगे और इमीडिएटली इसका कार्य जो है अगले कुछ दिन के अंदर इसको हम शुरू करवाएंगे।
0: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पर अपने संबोधन में कहा कि कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत सबसे पहले प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में हुई थी और बाद में उन्हें सरकारी कानूनों में शामिल किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बिल की सफलता को केवल कानून बनने से नहीं बल्कि सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने की क्षमता से मापा जाना चाहिए। कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जिज्ञासा, संवैधानिक निष्ठा और जनहित के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ विधायी काम करने का आग्रह किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सर्पदंश से होने वाली मृत्यु पर रोक लगाने के लिए व्यापक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आज धर्मशाला में एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। नेशनल हेल्थ मिशन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस बैठक में

0: विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोची के डॉक्टर जयदीप सी मेनन ने बताया कि जीरो स्नेक बाइट डेथ परियोजना देश के 7 राज्यों में संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में इसकी शुरुआत कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी और नूरपुर ब्लॉक से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है।
1: अभी हिमाचल में 2 ब्लॉक लिए हैं, एक तो ज्वालामुखी दूसरी नूरपुर। सो ये प्राइमरली कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ाना है और ये जो ज्यादातर लोग जाते हैं झाड़ू फूंक और दूसरी जो इलाज के लिए जाते हैं वो बंद करना चाहिए। इसके इलाज एक ही इलाज है, एंटी स्नेक वेनम। अगर सांप काटा हो, जहरीला हो, हिमाचल की हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इसकी अवेलेबल है।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सर्पदंश कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर उमेश भारती ने बताया कि हिमाचल में स्नेक बाइट को अब नोटिफाइएबल रोग घोषित किया गया है और सर्पदंश के हर मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा।
2: स्नेक बाइट जो है अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने भी और बाकी के स्टेट्स ने भी इसको नोटिफाइबल कर दिया। यानी पहले स्नेक बाइट होता था तो कोई बताता नहीं था, अब कोई भी स्नेक बाइट होगा उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो उसको कानून के तहत उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है।
0: राज्य सरकार लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल के बेली गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक अनुराधा राणा को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की बदहाल सड़कें और खराब मोबाइल नेटवर्क भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ग्रामीणों ने टूटे पुल की उच्च स्तरीय जांच और सड़कों की मरम्मत व मोबाइल नेटवर्क की समस्या का समाधान 15 दिन में करने की मांग की है। उधर रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की गहल पंचायत में लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि बार बार बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से गहल गांव में कई बार एक सप्ताह तक बिजली नहीं होती। उन्होंने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 23 केवी करने और इसे सड़क के किनारे स्थापित करने की बिजली बोर्ड से मांग की है।
3: पिछले 5 दिन से पूरा गांव अंधेरे में था और हमने बिजली विभाग से रिक्वेस्ट की जल्दी से जल्दी गहल गांव के लिए ट्रांसफार्मर भेजा जाए और बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर भी जरूर भेजा है। हमारे को दिक्कत ये आती है, पिछले 40-50 वर्षों से जब से यहां पर ट्रांसफार्मर स्थापित हुआ है लोगों को उठाकर लगभग 500-700 मीटर नीचे खाई में ले जाना पड़ता है। हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो गहल गांव का जो ट्रांसफार्मर है वो सड़क के लिए शिफ्ट किया जाए।
0: राज्य वन विभाग ने इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में 8000 हेक्टेयर भूमि पर करीब 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत करीब 4000 हेक्टेयर भूमि पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधे रोपे जाएंगे। वन बल प्रमुख डॉक्टर संजय सूद ने सभी वन मंडल अधिकारियों को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और राजीव गांधी ग्रीन अडॉप्शन योजना पर बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। राज्य पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने वित्त विभाग द्वारा पेंशनरों का जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने का सख्त विरोध किया है। शिमला से जारी एक बयान में समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि इस अधिसूचना से हजारों पेंशनरों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस अधिसूचना को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि 1-2 जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा मौजूदा कांग्रेस सरकार का अब तक का कार्यकाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम, इस पहल से शिक्षा व्यवस्था की होगी ऑनलाइन निगरानी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़कों की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रही है सरकार। सोलन सुबाथु सड़क के सुधार के लिए 23 करोड़ की DPR तैयार। हिमाचल में सर्पदंश से हो रही मृत्यु को रोकने के लिए तैयार होगी राज्य कार्य योजना। सर्पदंश योजना नोटिफाइएबल रोग घोषित। और सिरमौर जिला के रेणुका क्षेत्र की गहल पंचायत के लोगों ने बिजली समस्या के समाधान की सरकार से की मांग। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: सेवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
1: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और एफएम शिमला पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय अंब के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खाली पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के खाली पदों को भरने के लिए 18 से 35 वर्ष की पात्र महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर दिनांक 10 जुलाई 2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। योग्यता एवं मापदंड इस प्रकार से हैं। केवल वही महिला उम्मीदवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु आवेदन करने योग्य होगी जो इन शर्तों को पूरा करती हो। अभ्यर्थी संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र यानी फीडिंग एरिया का सामान्य निवासी होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10.2 पास होना अनिवार्य है। विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार, कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो और इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब के कार्यालय में 10 जुलाई 2026 साय 5 बजे तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके बाद किसी भी आवेदक से दस्तावेज प्राप्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार वाले दिन दिनांक 15 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे समस्त मूल दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब के कार्यालय में उपस्थित होना है। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं, आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गाई इस गजल के साथ।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। मौसम ने आज फिर कुछ ऐसा जादू कर दिया, तेरी यादों ने दिल को बेकरार कर दिया। बरसती हुई बूंदों में तेरा चेहरा दिखता है, बरसती हुई बूंदों में तेरा चेहरा दिखता है, और इस सुहाने मौसम ने तुझसे और प्यार कर दिया।

बबू मान की आवाज़ में ये पंजाबी गीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आपको बता दें कि आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, और आशा सिंह मस्ताना की आवाज़ में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये पंजाबी लोकगीत।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा।

0: राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
0: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
0: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी

पंकज उदास की आवाज़ में गाई इस गज़ल के साथ ही आज का विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान

0: कम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीफ पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
0: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
0: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने

0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा यह डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता,

0: चालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized

0: emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India, where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है।
3: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड। द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28th फरवरी, द सेकंड प्लांट ऑन 31st मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट। गिवन द स्पीड विद व्हिच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोस 12 प्लांट्स, अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे।
2: आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to the 8th of this month. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership.

0: FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:15 हुए हैं, अब आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिम दर्शन रिले किया जाएगा।
1: श्रोताओं नमस्कार। साप्ताहिक समाचार डायरी हिम दर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर। इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां। राज्य सरकार ने प्रदेश वन विकास निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार CBSE स्कूलों में मेरिट आधार पर होगी अध्यापकों की नियुक्ति। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, मौसम विभाग की आगामी एक सप्ताह तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी। प्रदेश सरकार ने राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से

0: 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित निगम की निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा 21,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की मंजूरी भी दी गई। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति दी गई, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। वहीं प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण का निर्णय भी बैठक में लिया गया। निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये करने को भी स्वीकृति दी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी, जिसमें पर्यावरण अनुकूल और अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। नाहन में आयोजित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस नीति में स्थानीय युवाओं को अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी और ये उद्योग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने पर जोर रहेगा।
1: हमने अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं, जिसमें कि हम ज्यादा प्रमोट, हम जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूनिट्स हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। जो वाटर कंज्यूमिंग यूनिट्स हैं, जैसे एथेनॉल का बहुत चलन है, उसको हम डिस्करेज करेंगे। पावर कंज्यूमिंग यूनिट्स है, सरिये वाले यूनिट्स है, उसको हम प्राथमिकता नहीं देंगे। ऐसी यूनिट्स को हम प्राथमिकता देंगे जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। और हमारी कोशिश है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, वहां पर हमारी इंडस्ट्री जाए, ताकि हमारे जो फ्रूट बेस्ड है, फूड वेस्ट है, हमारे कोल्ड स्टोरेज चेन्स है, इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी जल्द आने वाली है।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। राज्यपाल ने ये बात लोकभवन में उनसे मिलने आए गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कही। इस दौरान राज्यपाल ने एसोसिएशन के चला हिमाचल अभियान का पोस्टर भी जारी किया। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के प्रमुख जलाशयों और झीलों में साहसिक पर्यटन और जल क्रीड़ा गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। कविंद्र गुप्ता ने एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार व आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेगी। किन्नौर जिला प्रशासन ने खराब मौसम और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया है। ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि मौसम व मार्ग की स्थिति में सुधार के बाद ही किन्नर कैलाश यात्रा करवाने का निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर देव समाज ने प्रशासन से धार्मिक व पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का हवाला देकर इस यात्रा पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि CBSE स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों की पदोन्नति नीति भी मेरिट के आधार पर लाई जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में सूची लगभग 90% तैयार हो चुकी है और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में CBSE अध्यापकों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने पर सहमति बनी है और अब मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूलों के विलय का कार्य शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं किया जाएगा।
2: मेरिट के आधार पर जो हमने एक पॉलिसी लाई थी और उसके आधार पर आपकी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो। उदाहरण के तौर पे हमारे जो प्रिंसिपल्स के भी लगभग कोई 150 के आसपास हमने जो पद भरने हैं उसकी तो सूची भी तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है, और उसके उपरांत अन्य कैटेगरीज के जिन्होंने रिटर्न दिया था उसके बाद स्क्रीनिंग हुई, उसके आधार पर ये सारी बातें हो तो जो कल की बैठक थी उसके बारे में सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी। और अगर आवश्यकता पड़ेगी उसको हम कैबिनेट भी ले जाएंगे। और जहां तक हमारे शिक्षा विभाग की बात आती है, हमारा स्टैंड इसको लेकर क्लियर है कि मेरिट के आधार पर ये नियुक्तियां शीघ्र से शीघ्र हो।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने उन्ना में

0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
1: 2014 में मात्र 7 राज्यों में हमारी सरकारें थी, आज 2026 में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इसलिए हम कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते हैं कि सत्ता एक सेवा का माध्यम कैसे है, सत्ता में रहकर सरकारी योजनाओं पर धरातल पर लागू कैसे करें। कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इन्हीं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर संगठन की और ताकत को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं।
0: IGMC शिमला में अब रोगियों का उपचार करने के साथ साथ बीमारी के कारणों व विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के अध्ययन के प्रयास किए जा रहे हैं। IGMC की रिसर्च टीम द्वारा लाहौल स्पीति के काजा में पित्त की पथरी के मामले में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ये पथरी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है। रिसर्च टीम के प्रमुख डॉक्टर विपिन शर्मा ने बताया कि जनसंख्या के आधार पर गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए 2.5 वर्ष तक काजा में 450 लोगों पर ये अध्ययन किया गया।
2: इस स्पीति एरिया को हमने 3 हिस्सों में बांटा, 3500 मीटर से नीचे वाला एल्टीट्यूड तब वाला एरिया, मिड एल्टीट्यूड एरिया था 3501 से लेकर 4000 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, और उससे ऊपर वाला एरिया था मोर देन 4000 मीटर जिसका इक्विपमेंट कॉमिक वाला एरिया थी। पेशेंट को लिया गया, उनको समझाया गया, चेक किया गया, हर पेशेंट भूखे पेट अल्ट्रासाउंड हुआ, यानी कि 450 अगर लिए हैं तो 450 पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड किया, ऑन द स्पॉट ब्लड टेस्ट किया, फिर एनालाइज किया। अच्छा, जो मुख्य फाइंडिंग जो इसमें हमारे सबसे बड़ा जो एक चौंकाने वाला फैक्ट था कि इस पॉपुलेशन स्टडी में 21.3% लोगों में पथरी पाएगी।
0: वहीं अध्ययन की जानकारी देते हुए IGMC के चिकित्सा अधीक्षक राहुल राव ने बताया कि अस्पताल में अब बीमारियों और उनके कारणों को लेकर शोध किया जा रहा है।
3: हमने एक जनसंख्या आधारित गॉल ब्लैडर स्टोन की एक स्टडी की है, जो दैट इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कि अभी प्रकाशित भी किया गया, और ये स्टडी जो है काफी हमारे लिए भी मायने रखती है। इसकी जो शुरुआत है लगभग 2 साल पहले इन्होंने इस स्टडी को किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी भारत के लिए प्रसन्नता की बात रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अपील पर लोगों ने सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दिया। उन्होंने इस सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों का आभार जताया है।
4: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की गड़बड़ी के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज से करवाने की मांग की है, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। शिमला में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुलदीप राठौर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT बनाकर जांच का दिखावा किया है, लेकिन सरकार द्वारा नियुक्त SIT से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती।
5: इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास हो और जो दोषी हैं उन्हें बचाने की कोशिश हो, राम मंदिर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी ज्यादा सुरक्षा, CCTV कैमरा लगे, 400 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी है वो दिन रात मंदिर की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात है। और फिर ये मैं चोरी नहीं डकैती कहूंगा, कैसे ये लूट कैसे हुई। हमारी ये मांग है कि जो हमारा एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो जांच करे, सिटिंग जज से करे, रिटायर्ड जज से करे, ताकि मामले की सच्चाई जो है सामने आए।
0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और

0: आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, जल भराव और ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। खरीफ सीजन के दौरान भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमीरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में खरीफ सीजन में मक्की व धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। हमीरपुर के कृषि उपनिदेशक डीडी शर्मा ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। मक्की व धान की फसल बीमा के लिए 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम तय किया गया है। प्रदेश में मौसम की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में भी रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। बीते दिनों हुई भारी वर्षा के कारण प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 49 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। उधर लाहौल स्पीति में बादल फटने से आई बाढ़ से प्रभावित जहालमा नाला में राहत व पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को कहा गया है। इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम साहित्य भारती रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में

0: मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर सायास ही याद आ रहा है। जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
1: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा, तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
2: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई।
1: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
2: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
1: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता, उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख न जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका यही तो

0: कालिदास की रचनात्मकता का आधार है। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती, वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
1: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
2: और वो प्रश्न मैं हूँ ना?
1: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
2: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
2: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
1: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मल्लिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है।

0: और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
2: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं, पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में

0: लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाठ साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाठ साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। ये रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशरफी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशरफी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह

0: दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं वरिष्ठ लेखक स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
1: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
2: सुख से नहीं विवश उड़ने के पंख नहीं होने से और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
1: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी इधर निरीहों की थी आह उधर मिटा देने की धुन थी इधर प्रबल मिटने की चाह इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे शहीद थे उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी जवा कुसुम के हारों वाली शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसर स्नाता राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है वही रंग केसरिया रंग वो रंग उन्होंने कहा और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथी पूरी याद है परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो ये कविता की लाइन ऐसी है जो आमतौर पर

0: अब से पिछले 50-60-70-80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगत के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा।
3: ख्याल गायन, कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपने ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
4: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doyens of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay, born and groomed

0: के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल, तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, द कंपोजिशन ऑफ विच इज सेट टू मध्य लय तीन ताल, followed by Drut Ek Tal.

0: अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। He was accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha. And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: एफएम बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया

0: के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility an India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to 8th of this month. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from tomorrow till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. The Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. The monsoon session of the parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Reddy